एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

0: लीजिए, पेश है चिंतन। आलेख श्रीमती रतन वर्मा का है, स्वर है रवि कुमार सोनी का।
1: जब उम्र बहुत कम थी तो ये विचार आता था कि परिवार में अन्य सदस्यों के अलावा माँ के प्रति एक अपार स्नेह, श्रद्धा व आदर क्यों रहता है। किसी विद्वान विचारक को पढ़ा था कि भगवान सब जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को पृथ्वी पर भेज दिया। युगों से सभी देशों में, सभी धर्मों में माँ को पूजा गया है। हिंदुओं में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली आदि हमेशा से पूजनी और अद्वितीय रही हैं। माँ 9 महीने पेट में रखकर बच्चे को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने शरीर का दूध पिलाकर उसकी सेवा कर उसे बड़ा करती है। बीमार पड़ता है तो रात रात भर जागकर उसे टहलाती है और सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद रात रात जागती रहती है। शायद माँ के इसी रूप ने एना जारनेस को सोचने पर मजबूर किया हो कि निस्वार्थ स्नेह से जो सेवा माँ करती है, उसे मान्यता देने हेतु माँ का दिल मदर्स डे मनाना चाहिए। आज के युग में लोगों के रहन सहन और तौर तरीकों के साथ विचार बदल गए, मान्यताएं बदल गईं। अब तो सोच है हम दो और हमारे दो और परिवार पूर्ण, अन्य किसी भी यानि माता पिता आदि की आवश्यकता नहीं, वे बोझ माने जाते हैं। माँ को भाई पालने को तैयार हो तो दूसरा भाई पिता को पालने को तैयार होता है, वरना उन्हें दूर कहीं तीर्थ स्थान में ले जाकर छोड़ देते हैं, या आजकल बहुत जगह वृद्धाश्रम भी खुल गए हैं। कुछ दिन पूर्व एक लघु कथा पढ़ी थी कि एक बेटे व दूसरे बेटे में माँ को 15-15 दिन खिलाने का तय किया, परंतु एक महीना जिसमें 31 दिन आए, उस 31वें दिन उसे भूखा रहना पड़ा। ये लघु कथा पढ़कर कई दिनों तक विचलित और चिंतन करते रहे। ये विषय ही ऐसा है, क्या वो बच्चों को जन्म देकर उस माँ ने उसका लालन पालन कर अपनी सुख सुविधा का तनिक भी ध्यान न रखकर उनकी सेवा की, तो क्या वास्तव में वो माँ ऐसे व्यवहार और उपेक्षा की पात्र है? आइए आज इसी पर चिंतन करें और सोचें कि हम कहीं ऐसे तो नहीं।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था श्रीमती रतन वर्मा का, स्वर रवि कुमार सोनी का।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
5: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
4: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
5: क्यों?
4: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
5: वो कैसे?
4: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
5: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
4: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
5: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
4: आप कब आ रहे हैं?
5: आकाशवाणी खंडवा आरोप।

आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर था भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए मृदा क्षरण की रोकथाम विषय पर आज की कृषि चर्चा। चर्चा कर रही हैं स्मिता बरोले।
1: भाई बहनों होली राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे मृदा क्षरण की रोकथाम हेतु सस्य क्रियाना। वाचक स्वर स्मिता बरोले। लगातार बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण न जलवायु परिवर्तन का कारण वैश्विक स्तर पर उपजाऊ भूमि लगातार खराब होती जा रही। नई स्थिति में आवश्यक हुई जायज के तत्काल प्रभाव से भूमि एवं पर्यावरण संरक्षित कृषि पद्धति न ख अपनायो जाए न कई सस्य क्रिया न छे जेका से मिट्टी को क्षरण ख रोकियो जाय सके। जेमा जैविक खेती, समन्वित खेती, जल प्रबंधन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, संरक्षण कृषि द्वारा ई संभव हुई सकज। एका साथज कृषि वानिकी द्वारा भी मिट्टी को क्षरण रोकना मा मिट्टी ख स्वस्थ बनाए रखना को एक कारागार उपाय छे। वृक्ष भूमि की ऊपरी परत ख धूप बारिश का प्रभाव सी बचावज न पेड़ की जड़ भूमि की गहराई तक मिट्टी ख बांधज अरु क्षरण ख रोकज। वृक्ष भूमि न मा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ावज। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन ये विधि द्वारा भी मिट्टी को क्षरण रोकियो जाय सकज। वर्षा जल ख संरक्षित करनु, अपवाह ख रोकनु, वर्षा जल को सावधानी पूर्वक निपटारो करनु ये सभी जल संरक्षण का उपाय छे। न जल प्रबंधन का लेना मेड़ बनाउनु, ग्रेडेड बंड, कंटूर बेड, बेंच टेरेस, हाफ मून टेरेस, घास वाला जल मार्ग अरु तालाब बनाउनु छे। एका अलावा अंतः फसल भी एक विधि छे। अधिक दूरी वाली फसल का बीच में अंतः फसल ख उगई न मिट्टी क्षरण ख कम कियो जाय सकज। एका साथ साथ पर्यावरण ख भी संरक्षित करियो जाय सकज। अंत फसल जल धारण क्षमता बढ़ाना का साथ सूक्ष्म जीव की संख्या ख भी बढ़ाव। गहरी जोड़ वाली दलहनी फसल नख अंत फसल का रूप में अधिक उपयोगी मान्यो जाए। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अरु जैविक खेती रासायनिक कार्बनिक एवं जैविक उर्वरक नख समन्वित करीना एक तरह से रासायनिक खाद को प्रयोग कम करियो जाय सकज। वहां दूसरी ओर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ख बढ़ायो जाय सकज। एका अलावा जैविक खेती मृदा स्वास्थ्य ख बनाए रखना का लेना ई महत्वपूर्ण उपाय छे। सातज फसल चक्र कार्बनिक न जैविक खाद फसल विविधीकरण ख अपनायो जाय सकज। समन्वित कृषि प्रणाली ई विधि में फसल चक्र, फसल विविधीकरण, कम जुताई, फसल अवशेष प्रबंधन, पशुपालन पर कार्य करियो जाय। एका परिणाम स्वरूप मिट्टी, वनस्पति न पशु न का बीच में एक सामंजस्य स्थापित करियो जाए। विविधीकरण भूमि प्रबंधन का लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण विकल्प छे। एकज फसल ख बार बार उगावने से मिट्टी को स्वास्थ्य खराब हुई जाए। एका स्थान पर फसल विविधीकरण, अंत फसल चक्र न दलहनी फसल का समावेश मिट्टी का क्षरण ख रोकियो जाय सकज। एकज स्थान पर धान गेहूं लगावने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई जाए। एका स्थान पर मक्का, ज्वार, सरसों या दलहनी फसल लगाणु चाहिए। संरक्षण कृषि का तीन स्तंभ छे जुताई, फसल अवशेष प्रबंधन न फसल विविधीकरण पर निर्भर रहे। ई विधिना द्वारा मिट्टी को क्षरण आसानी से रोकियो जाय सकज। एका अलावा किसान भाई खेत की मिट्टी का समतल करी सकज जे कासी जो पानी छे भू आसानी से बही जाएगा न सातज जो मजबूत मेड़बंदी छे वो भी किसान भाई करी सकज। बरसात का दिन में खेत की जो मेड़बंदी छे वो मजबूती सी करनु चाहिए ताकि खेत सी पानी बाहर न बही सका न मिट्टी को कटाव रुकी सका। एका अलावा रेतीली भूमि का जीवांश न खाद में मिलाणु चाहिए। रेतीली भूमि हल्की होए न हल्की मिट्टी का साथ जल्दी भई जाए अतः रेतीली भूमि में जीवांश पदार्थ मिलाणु चाहिए ताकि मिट्टी का कण आपस में बंधे रहे न मिट्टी पानी का साथ नहीं बही सका। एका साथज वनस्पति उगाणु किसान भाई वह भूमि जेक पर फसल या पौधा नहीं उगाया जाता ही वर्षा का पानी का साथ वो बही जाए तो ऐसी जगह पर पेड़ पौधा लगाई देना चाहिए। तो ये विधि ना अपनाई ना किसान भाई मिट्टी को क्षरण रोकी सके। तो भाई बहनों ये तो थी आज की कृषि चर्चा। राम राम।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। चर्चा का विषय था मृदा क्षरण की रोकथाम और वाचक स्वर था स्मिता बरोले का।
2: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आज सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता जल ही जीवन है। वार्ताकार होंगी सोनिया बाहेती। आज माह का पहला शुक्रवार है तो आज सुबह 7:20 पर क्रम होगा एक कहानी। इसमें आज सुनिएगा शिवानी मौर्य की कहानी पुनर्मिलन की चाह। सुनहरे पलों में बने रहिए हमारे साथ सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच। और सुबह 8:15 झब्बूलाल ढाक से और साथियों से, और साथ ही सुबह 10:40 पर मालती गवली और साथियों से सुनिएगा निमाड़ी लोकगीत।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: सुबह 8:30 पर आपकी मीत ये गीत कार्यक्रम में सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत। सुबह 9 से 10 के बीच हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 10 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और सुबह 10:05 पर आज नारी जगत कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर। इसी कार्यक्रम में मिसाल क्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्यूटिशियन सरला शर्मा से शीतल बाहेती की बातचीत। और इसी कार्यक्रम में आपको टिप्स मिलेंगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को चमकाने के बारे में। तो जरूर सुनिएगा नारी जगत कार्यक्रम सुबह 10:05 पर।

शाम 5:30 पर सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6 बजे नियमित कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज क्रम होगा गीतों भरी कहानी का। और 6:30 से 7 बजे के बीच आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे शाम 7:21 पर, रात 8 बजे से 8:45 के बीच, फिर 9 बजे से 9:15 के बीच और फिर 9:30 से 11 बजे के बीच हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। रात 9:15 सुनेगा आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम स्पॉटलाइट। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की।

आज की ताज़ा खबरों में खंडवा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 15 और सहायिकाओं के 32 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। भर्ती में स्थानीय पात्रताधारी आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। आवेदिका का उसी राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है जहां का पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन 13 जुलाई तक चयन पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है। अगली खबर, बमनगांव आखई में ग्रामीण रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. विजय शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। VBG रामजी योजना के अंतर्गत 125 दिन ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद की जोन स्तरीय प्रतियोगिता में एकलव्य विद्यालय रोशनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता राजस्थान के उदयपुर के खैरवाड़ा में आयोजित की गई थी। कल शासकीय ITI खंडवा में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत 3 कंपनियों ने 80 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया। तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा में वैष्णो देवी तीर्थ स्थान के लिए 3 जुलाई को वृद्धजन रवाना होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह विशेष रेलगाड़ी 8 जुलाई को वापस खंडवा पहुंचेगी। अब खेल समाचार। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घरेलू बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3x15 स्कोरिंग प्रणाली लागू की है। नए नियमों के तहत मैच पारंपरिक 21 अंकों के बजाय 15 अंकों का होगा। मौसम की जानकारी, पिछले 24 घंटों में खंडवा तहसील में 20 मिलीमीटर और जिले में 4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। कल के दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें, जिनका संकलन किया फातिमा लोखंडवाला ने।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: हम निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है विशेष कार्यक्रम में वार्ता, जल ही जीवन है। वार्ताकार हैं सोनिया बाहेती।
2: नीर नीर को तरसेंगे जब नीर बूंद नहीं बरसेंगे, सूख जाएंगे सरिता सरोवर, तब नीर कहाँ से हम लेंगे। जल है तो कल है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा से सुनते आए हैं जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर हम मनुष्यों, जीव जंतुओं वह पशु पक्षियों को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्रकृति में सुगंधित पुष्प, शुद्ध वायु, फल, भोजन व जल, जिस पर हम सभी निर्भर हैं। मनुष्य हो या जीव जंतु, पशु पक्षी आहार के बिना एक दिन रह सकते हैं, परंतु जल न मिले तो एक दिन भी जीवन संभव नहीं। वरना मनुष्य हो या पशु पक्षी, उनका अस्तित्व ही पृथ्वी से मिट जाएगा। तो सखियों, जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, क्योंकि विज्ञान अनुसार हमारे शरीर में 70% जल व 30% रक्त होता है। तो ये विचारणीय है कि जल की हमें कितनी अधिक आवश्यकता है। आज मनुष्य वर्तमान भौतिक युग में जीवन यापन कर रहा है। हम इन भौतिक सुख सुविधाओं, विलासिताओं के परिवेश में इतने स्वार्थी हो गए हैं, जिसके कारण हमें प्रकृति के प्रति कार्य करने में असहजता महसूस होती है। इन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें भविष्य में बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। पृथ्वी पर जल ईश्वर द्वारा हमें अमूल्य धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, परंतु प्रकृति हमसे प्रेम, सुरक्षा, कर्तव्य, निष्ठा, अनुशासन की चाह रखती है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, उसमें से एक तत्व है जल। बिन पानी के फसल मुश्किल है, तो पृथ्वी पर हम जीवन का अस्तित्व धोखे में आ सकता है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में जल पीना आवश्यक है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाने में मदद करता है। रहीमन पागनी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तात्पर्य यह है कि जल को अधिक व्यर्थ के उपयोग से बचाना है। भविष्य में पैसों की बचत से भी अहम पानी की बचत अनिवार्य है। जल भगवान द्वारा हम मनुष्यों को दिया जाने वाला अमूल्य उपहार है। जल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। हम लोग हवा बदल के लिए समुद्र, झीलों और नदियों जैसे जलाशयों के सानिध्य में ही जाते हैं। पानी की शांत ध्वनि और उससे मिलने वाली शांति तनाव को कम करने और हमारे समग्र मूड को बेहतर बनाती है। पानी पौधों और जानवरों के विकास और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पौधों के बिना पानी का संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पौधों पर जीवित रहने वाले जानवर, मनुष्य, प्राणी भी असमर्थ हो जाएंगे। ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में से केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जल है। हमारे आसपास की वन संपदा पक्षियों की गुंजारव से कितना सुहावना लगता है। आज हम जल की कीमत अदा कर रहे हैं जो कि बोतल बंद पानी के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में जल भार अत्यधिक कष्टदायी हो सकता है। जल को बचाने या जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए सरकार द्वारा विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत 22 मार्च

1933 को हुई थी। जल संरक्षण का तात्पर्य है कि जल के व्यर्थ के उपयोग को बचाना। पृथ्वी पर पीने का पानी केवल 3% है। जल को बचाने के लिए वन संवर्धन जरूरी है। नदियाँ तालाब साफ रखने होंगे, खेती की व्यवस्था कम जल से करनी होगी, अपव्यय टालना होगा। बढ़ती जनसंख्या भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह जनसंख्या अनेक कारणों से जल का बड़ा प्रयोग करती है। नदियों को नदियों से जोड़ना, ये उपाय भी महत्व रखता है। हमारे देश में

0: करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है। जैसे हर इस्तेमाल के बाद नल को ठीक से बंद कर दें, फव्वारे या पाइप के बजाय मग का उपयोग करें। लाखों लोगों के एक छोटे से प्रयास से जल संरक्षण का एक बड़ा सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। जल संरक्षण, आज हमें ये विचार करना होगा कि प्राकृतिक जल स्रोत, नदियाँ, झरने आदि का संरक्षण कैसे किया जाए। हमें अपने दैनिक जीवन कार्यों की आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग करना होगा। जल संरक्षण के लिए हमें प्रकृति संरक्षण करना होगा। जल संरक्षण कोई एक व्यक्ति, संगठन, संस्था मिलकर नहीं कर सकते, बल्कि यह देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब नीर बूंद ना होगी व्यर्थ, इसी क्षण कर लो संकल्प। नीर है जीवन की अमृत धारा, नीर का नहीं कोई दूजा विकल्प। हमें हमारे कल को बचाना है तो पेड़ पौधे लगाने होंगे, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना होगा, तभी हम हमारा आज और आने वाला कल बचा सकेंगे। क्योंकि जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ का वातावरण ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए वे बादल को आकर्षित करके उन्हें ठंडक प्रदान करते हैं। और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी अधिक वर्षा होगी और पृथ्वी पर पानी की मात्रा मिलेगी। तो सखियों, हम हमारे दैनिक जीवन के कार्यों से भी जल का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। व्यर्थ में पानी का बहना, क्योंकि जब पानी अधिक मात्रा में घरों में आता है तो व्यक्ति व्यर्थ में जल बहा देते हैं। नलों का उपयोग होने के बाद व्यर्थ में चालू रहता है, जितनी बार हाथ धो रहे हैं तो धीमी गति में नल को चालू करें। कार धोने और पेड़ पौधों को पानी देने में तेज गति से जल का प्रवाह ना होकर धीमी गति से जल का प्रवाह करें। टपकती हुई पाइपलाइन की जाँच करें, खास तौर पर रिसने वाले फ्लश टैंक और नल। हर रिसने वाले पानी के उपकरण को ठीक कराएं। नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति व बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ रही है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी। यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाए रहते हैं। हमें पानी बचाने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। बढ़ती आबादी, विनियमित जल उपयोग और अवैध जल प्रदूषण के कारण नदियाँ, झीलें प्रदूषित हो रही हैं, जिससे पानी की उचित व्यवस्था में कमी हो रही है। पृथ्वी के जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जल संरचना को सुधारना चाहिए और समुदाय को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। कहा ही भी गया है, जल ही जीवन, जल ही जान, जल के बिना दुनिया वीरान। इसके बिना न वन उपवन, उगेगा ना खेतों में अन्न। जल ही अमृत, जल ही प्राण, जल के बिना दुनिया सुनसान। पानी है अनमोल रत्न, इसे बचाओ मिल सब जन।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जल ही जीवन है। वार्ताकार थी सोनिया बाहेती।
2: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन,
3: आकाशवाणी खंडवा।
4: ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। स्कूल चले अभियान के दौरान ही संदीप ने विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गो से शुरू। और प्रदेश में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, आज हरदा नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आज साझेदारी को और भी गतिशील तथा प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: वहीं जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में इन दिनों स्कूल चले अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक संदीप ने विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अलग अलग विभागों की हुई समीक्षा बैठक में इस पर जोर दिया। डॉ. यादव ने कहा कि संदीपनी विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों में धर्मशाला, सराय, अन्य क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा समग्र की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान और नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देश पर चर्चा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन होकर नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की छटनी और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल समेत 11 जिलों में कल से रुक रुक कर तेज बारिश हुई। सतना और झाबुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सतना में बालिका स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई हैं। दमोह में लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंदौर में भी रात से कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका है। इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के कैनिंगटन ओवल में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सका। रविवार को लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के बमन गांव आखई में कल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMJI योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। आगर मालवा जिला पुलिस को ई विवेचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्रों के 153 विवेचकों को टैबलेट दिए गए। अशोकनगर जिले में सभी शासकीय विभाग और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान और गतिविधियां संचालित करेंगी। ये निर्देश कर कलेक्टर ने एक बैठक में दिए। भोपाल ने नगर निगम और फायर विभाग ने कल MP नगर स्थित 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। धार जिले में तेजी से विकसित हो रहे देश के महत्वाकांक्षी PM मित्रा पार्क का इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल दौरा किया। इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल झाबुआ के विभिन्न गांवों का सघन भ्रमण कर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए पेश है एक कहानी, आज इसमें सुनिए शिवानी मौर्य की कहानी पुनर्मिलन की चाह।

बड़ी ही मध्यम गति से एक पॉश गाड़ी पुल पर रुकी। धीरे से दोनों गेट खुले। एक परिपक्व आयु के महिला और पुरुष, जो कि बहुत संजीदा और नौकरी पेशा भी दिखाई दे रहे थे, गाड़ी से उतरे। दो पल के लिए एक दूसरे को देखा, ऐसे देखा जैसे हमेशा के लिए एक दूसरे को निगाह में भर लेना चाह रही हूँ। एक दर्द मिश्रित मुस्कुराहट लिए, एक दूसरे का हाथ थामा और नदी की रेलिंग के पास पहुँच गए। एक दूसरे को फिर से देखा। इस बार महिला की आंखों से आंसू बरस रहे थे तो पुरुष की भी पलकें नम थी। आखिरी बार एक दूसरे को आंखों में भर लेने की अपूर्ण कोशिश के साथ जैसे ही नदी में डूबने को तैयार हुए, रुको, दूर से कठोर सी आवाज से दोनों के कदम ठिठके। पागल मत बनो, दिखने में समझदार, धनी और स्वस्थ होते हुए भी तुम लोगों को अपना जीवन क्यों समाप्त करना है? उतरो नीचे, ईश्वर सब देख रहा है, एक सन्यासी चिल्लाया। अगले कुछ पलों में वे उसी सन्यासी के आश्रम में निराश, हताश, शून्य भाव लिए अपराधी किसी मुद्रा में बैठे थे। जीवन की ऐसी कौन सी उलझन है जिसका हल तुम इतने सक्षम होते हुए भी नहीं ढूंढ पा रहे हो और आत्महत्या जैसा घृणित कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हो? तुम दोनों को देखकर लगता है संभ्रांत परिवार के हो। कर्ज है, कोई हत्या कर दी, गबन कर दिया, जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो जो ठीक नहीं हो पा रही है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई प्रताड़ित कर रहा है, समस्या क्या है तुम लोगों की? हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, महिला ने अधीरतापूर्वक उत्तर दिया। तो दरअसल हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, विगत 6 माह से हम एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे अलग अलग परिवार हैं, खुशहाल परिवार है, कोई कष्ट नहीं है, परंतु पता नहीं कोई जादू है या कोई रोग या कोई सम्मोहिनी, हम जैसे एक दूसरे को देखे बिना, बात करे बिना चैन से जी ही नहीं पा रहे। मुझे विस्तार से बताइए साहब। आप देखिए बाबा, मैं अभी तक तकरीबन 13 कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, पुरुष बताता रहा। 8 महीने पहले एक कंपनी में नया ज्वाइन हुआ हूँ। कंपनी का वातावरण देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। धीरे धीरे कंपनी की कार्य प्रणाली समझते हुए कई अलग अलग विभागों के अधिकारियों के संपर्क में लंबे समय तक रहना पड़ता है। ठीक है, मैडम जिस विभाग में है उसके विषय में भी जानने के लिए इनसे बात करनी पड़ी। इनके काम का तरीका देखा, इनकी शालीनता और काम करने के स्मार्ट तरीके से मैं प्रभावित भी हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक, वो दिन, वो पल मुझे भुला ही नहीं भूल रहा। उस दिन उन्होंने एक ऑफ वाइट कलर के शिफॉन की साड़ी पहनी थी, साथ में सफ़ेद मोतियों की माला, अधखुले से केश और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उस दिन उन्होंने जैसे ही मुझे गुड मॉर्निंग कहा, मेरी आंखें उनके चेहरे पर थम सी गई। अचानक ऐसा लगा कि बस फिर देखता ही रहूं। मैडम ने साइन किया, अपना फाइल के ज़रूरी कागजात को जमाया, फिर मेरी तरफ जैसे ही देखा, एक अजीब सा चुंबकीय सा प्रभाव उस निगाहों में महसूस करता रहा। आंखें जड़ सी हो गई, चेहरे से हटना ही नहीं चाह रही थी। प्यून की तेज़ आवाज़ से मेरा ध्यान इस संसार में फिर लौटा। मैडम तब तक जा चुकी थी। प्यून सर, आपने पानी मंगाया था और आपने कोई आपसे मिलने का की परमिशन मांग रहा है, उसने डरते हुए जवाब दिया। तब मैं अपनी दुनिया में तो लौट आया, पर मुझे लगा मैं अपने आप में नहीं हूँ। उसके बाद से बस खोया खोया सा रहता हूँ। पहले मैं एक स्ट्रिक्ट बॉस के तौर पर जाना जाता था। काम में किसी की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाता था। छोटी छोटी बातों पर सभी को डांट दिया करता था। हर काम परफेक्ट चाहिए था, इसलिए हर अच्छी कंपनी मुझे अच्छे से अच्छे पैकेज पर हायर करती थी। लेकिन उस दिन के बाद खोया खोया सा रहता हूँ। ऑफिस में उसे ना देखूँ तो चैन नहीं आता, उससे बात ना हो तो काम में मन नहीं लगता। इतनी बेचैनी, इतनी बेसब्री मुझे कभी किसी हाल में नहीं हुई, उम्र की कभी किसी पड़ाव पर नहीं हुई, या यूँ कह लीजिए उससे मिलकर हम कुछ बदल सके।

0: शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। लेकिन किसी को सिर्फ देख ही सकता हूँ, बात भी थोड़ी देर ही कर सकता हूँ। एक शादीशुदा महिला एक बॉस की इस बीमारी में क्या कर सकती थी, लेकिन मैं इन्हें हमेशा मजबूर करता रहा। मुझे देखो, मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। फिर एक दिन मैंने मोबाइल पर इनसे रोज़ बात करने का प्रॉमिस लिया और कभी कभार गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने का नियम भी बना लिया, इनसे रिक्वेस्ट करके कि आप बस मेरे मैसेज को देख भर लिया करें, मैं ब्लू टिक से ही खुश हो जाया करूँगा। फिर यह सिलसिला चलता रहा। रोज़ गुड मॉर्निंग मैसेज आता, रोज़ ब्लू टिक दिखता, रोज़ एक दूसरे को देख लेते। अब यह सिलसिला चलता रहा कि अचानक कंपनी से जुड़े हमारे मोबाइल पर लगातार एक ही एम्प्लॉय से सिलसिलेवार मैसेज के नोटिफिकेशन से कंपनी को ऑब्जेक्शन रहने लगा। वैसे तो मैं बॉस था, पर कार्यप्रणाली और नियम सबके लिए एक से थे। खैर, मैं बहुत बेसब्र सा मैसेज और बात ना कर पाऊँ तो शायद जिंदा ना रहूँ। पता नहीं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं बहुत बेचैन हूँ। ठीक है, तुम थोड़ी देर बाहर विश्राम करो, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और उस स्त्री की तरफ देखते हुए, और बेटा तुम बताओ। बाबा, मेरा भी खुशहाल परिवार है, बच्चे हैं, बड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपनी नौकरी में खुश हूँ। पर एक दिन बॉस ने मुझे 2 मिनट तक लगातार ऐसे देखा, मेरी आंखों में आंखें डालकर, और उसके बाद एक अजीब सी सिरहन हुई और ऐसा लगा जैसे मैं कुछ नहीं, एक परछाई हूँ। बस दिनचर्या के काम जैसे तैसे करके फिर उन्हीं की आंखों की तलाश। मेरे जैसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, व्यस्त महिला, सामाजिक और पारिवारिक महिला जैसे किसी जादू से बंध गई, खोई खोई सी रहने लगी। कभी टूथब्रश पर फेस वॉश लगाती, कभी चाय में धनिया पत्ती डाल देती, और थोड़ी थोड़ी देर में होश आने पर शर्मिंदगी से भर जाती कि मैं सब क्या कर रही हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है। मैं ये सब करना नहीं चाहती, पर सब होता चला जा रहा, और जब मैं बॉस को ना देख लूँ मुझे जीवन ही बेकार लगता। और आज तंग आकर हमने साथ मरने का फैसला ही कर लिया। तुम भी बाहर बैठो। करीब 2 घंटे की साधना और ध्यान के बाद उन्होंने दोनों को बुलाया और बताना शुरू किया, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों के बीच एक ऐसी आत्मा भी सक्रिय है जो तुम दोनों के नैसर्गिक स्वभाव को भी प्रभावित कर रही है। पुत्री, तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो तुमसे बहुत अधिक प्रेम कर रहा हो, तुम्हारे प्रति आसक्त हो, और तुमने उसे कोई महत्व ही ना दिया हो, उसकी बात न मानी हो और उस पर विश्वास नहीं किया हो? वही अब इस दुनिया में नहीं है, किंतु उसकी आत्मा अब इस शख्स के माध्यम से अपनी अधूरी कामना को पूर्ण करना चाहती है। उसे न तुम नियंत्रित कर सकती हो, न ये महाशय, और ये सब एक खास दिन घटा है। मैं देख रहा हूँ, एक दिन ये साहब अपने घर की बालकनी में खड़े थे और उसी दिन उस व्यक्ति की मृतदेह इसके घर के सामने से ले जाई जा रही थी। अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण आत्मा शरीर के आसपास ही थी और अचानक आपका शरीर उन्हें दिखाई दिया। कुछ संयोग ऐसे बने कि उस आत्मा ने आपकी देह को चुना अपनी पूर्व प्रेमिका से पुनर्मिलन के लिए। चूंकि यह एक शक्तिशाली आत्मा है जो आप दोनों को अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर रही है और करती रहेगी, आज का संयोग उस आत्मा को इतना शक्तिशाली बना रहा था कि वो पुनर्मिलन की चाह में आप दोनों को अपने साथ ले जाना चाह रही है। तो अब इसका एक ही स्थायी समाधान है कि आप लोग अपने परिवार को इस स्थिति से अवगत कराएं और आपस में संपर्क में रहें तो सही, पर अत्यधिक विरोध ना करें। विरोध सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। और धीरे धीरे ईश्वर का ध्यान करते रहिए, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अब वो अच्छे मित्र हैं, संतृप्त हैं, और वो रूह भी खुश और तृप्त है कि ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस इतना ही सही।
1: एक कहानी। अभी आप सुन रहे थे एक कहानी। इसमें आज आपने सुनी शिवानी मौर्य की।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज सुनहरे पल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति गोखले। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो पहले था पुलिस इंस्पेक्टर, एक ऐसा कलाकार जो 40 साल तक अपनी आवाज के कारण मशहूर था। इनको मिली प्रसिद्धि बेशुमार। वो एक्टर हैं नन अदर देन द लेजेंडरी एक्टर राजकुमार।
1: ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बन्ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।
2: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
0: सुप्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर बलूचिस्तान के लोरा लाई में हुआ था, जिसको बोरी भी कहा जाता है। राजकुमार एक एजुकेटेड कश्मीरी फैमिली से थे। वो कश्मीरी पंडित थे और उनका असली नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। इनके पिताजी का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित और इनकी माताजी का नाम था धनराज रानी पंडित। चूंकि वे एक एजुकेटेड फैमिली से थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से की थी और राजकुमार कई भाषाओं के जानकार भी थे। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी भाषा जानते थे। साथ ही साथ पंडित थे तो वेद पुराणों का भी अध्ययन किया था संस्कृत भाषा में, और इसीलिए संस्कृत भाषा के भी बखूबी जानकार थे राजकुमार। वे 40 के दशक में 14 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए थे। पढ़ाई लिखाई के बाद इन्हें मिली पहली सरकारी नौकरी, जो कि पुलिस विभाग में थी। इनकी पहली पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर की, और वो भी मुंबई पुलिस में। क्योंकि वे 6 फुट लंबे थे, उनके दोस्त हमेशा उन्हें कहते थे कि यार तुम्हें तो फिल्मों में आना चाहिए। राजकुमार कभी भी एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थे। वे कहते थे, एक्टिंग वगैरह मेरे बस की बात नहीं, मैं तो पुलिस की नौकरी में रहकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। पर इनके एक दोस्त ने इन्हें बहुत प्रेशराइज किया, तो इनकी कुछ फोटोग्राफ्स खींची गई और उसी दोस्त ने एक प्रोड्यूसर को उनकी ये तस्वीरें दिखाई और प्रोड्यूसर ने कहा, ये तो बंदा बड़ा कमाल का लगता है, इसे तो बुला ही लेना चाहिए। और फिर हुआ ये कि 1952 में 26 साल की उम्र में इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। फिल्म का नाम था रंगीली। इसके बाद इन्हें पता भी नहीं था कि ये वो एक्टर हैं जो कि पहली इंडियन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म में काम करने वाले हैं। 1957 में इन्हें मौका मिला महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में काम करने का, जिसमें इन्होंने राधा यानी नरगिस जी के पति का यानी श्यामू का किरदार बखूबी निभाया। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये सदाबहार गाना।

0: वर्ष 1957 में ही इनकी एक और फिल्म आई जिससे इन्हें मिली प्रसिद्धि। फिल्म का नाम था पाकीज़ा। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का वही प्रसिद्ध संवाद।
1: माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर।
0: श्रोताओं, कितना साधा सा संवाद था ये। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में राजकुमार साहब ने इसे बोला, ये डायलॉग इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज भी हम सभी को जुबानी याद है ना।

0: अब बात करते हैं फिल्म वक्त की। दो बड़े ही पॉपुलर डायलॉग थे इस फिल्म के, आइए इन्हें सुनते हैं।
1: जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।

0: राजकुमार साहब का स्टाइल बड़ा ही यूनिक था। डायरेक्टर्स अक्सर व्हाइट शूज और कार से या फिर हेलीकॉप्टर से बड़े ही रोबदार अंदाज में उतरते हुए राजकुमार साहब के सीन्स अक्सर फिल्माया करते थे। उनकी एक और चर्चित फिल्म की बात करें तो वो है सौदागर, जिसमें उनके डिग्री दोस्त और जो बाद में फिल्म में कट्टर दुश्मन बन जाता है, ये रोल निभाया था दिलीप कुमार साहब ने। कहते हैं असल जीवन में भी इन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी सेट पर सीन्स करने के बाद दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं किया करते थे। बहरहाल इस फिल्म में राजकुमार साहब के कई लोकप्रिय संवाद रहे हैं, जिनमें से एक है,
1: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।

राजकुमार जी ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में लगभग 65 फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख थी गोदान, जिंदगी, पैगाम, दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई, काजल, हमराज, नील कमल, हीर रांझा, कुदरत, मरते दम तक, तिरंगा, और इनकी सबसे आखिरी फिल्म थी गॉड एंड गन। इन सभी फिल्मों में से एक बेहतरीन फिल्म हीर रांझा से आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: जाऊं भी?
0: नहीं।

0: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं दिलीप मंदिर इस फिल्म से ये संवाद और उसी से जुड़ा ये गीत।
1: औरत का दिल एक मंदिर है जिसमें एक ही भगवान रहता है और वो है उसका पति।
2: ये आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा या नहीं? मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें पहली बार सुहागरात को देखा।
1: ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा।
2: सीता, ये मेरी आरजू ही नहीं, मेरी आत्मा की मांग है। इसे पूरा कर दोगी तो ये बाकी चंद घंटे मैं अपने दुख दर्द को भूल सकूंगा।
1: कैसे दुख से वाली बातें करते हैं।
2: लेकिन सीता, जो दुख तुम्हें बाद में होगा ये सोच कर कि तुमने मेरी आखिरी तमन्ना पूरी नहीं।
1: मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बात मत कहिए।
2: मान जाओ सीता, मान जाओ, मेरी सुनो, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है सीता।
3: रुक।

राजकुमार जी के जीवन में भी वो रात आने से न रुक पाई जो उन्हें हम सब से दूर ले गई। जिनके संवाद आज भी हमारे बीच लोकप्रिय है, वही राजकुमार जी की आवाज उनके अंतिम समय में उनसे रूठ गई थी। थ्रोट कैंसर की वजह से राजकुमार साहब ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। एकांत कमरे में भी उनके पास खड़े होकर भी उन्हें सुन पाना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसी बीमारी के चलते 3 जुलाई 1996 को देर रात राजकुमार हमें अपनी यादों के साथ छोड़कर हमेशा के लिए अनंत में विलीन हो गए। आज राजकुमार हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका वो रौबदार स्टाइल, उनकी अनूठी आवाज में उनके संवाद आज भी हमें रोमांचित करते हैं। आज हम उन्हें अर्पित करते हैं हमारे श्रद्धा सुमन। आज का सुनहरे पल कार्यक्रम यहीं तक। अपना स्नेह हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इंतजार रहेगा हमें आपके ईमेल्स और खतों का। आज सुनहरे पल कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति गोखले। आपका दिन शुभ हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, जिसे पेश किया कीर्ति ने।
1: अरे पढ़ना होनी काई हुई गयो आज।
2: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा, निमाड़ की सुरीली धड़कन।
3: न आज तक निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना।
4: मजा आ गया।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आपके साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बाल

0: दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के

0: मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है।

0: जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को

0: लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और
1: न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर
0: मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ते की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हैं, पेश है निमाड़ी लोकगीत, कलाकार हैं झबूलाल ढाक से और साथी।

0: आप सुन रहे थे झब्बूलाल ढाकसे और साथियों के गाये निमाड़ी लोकगीत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हमारे अगले कार्यक्रम के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार। गुनगुनाते रहें और सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: हम निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है आप श्रोताओं के मेल और पत्रों पर केंद्रित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
2: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और स्वीकार कीजिए पराग का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें जिन श्रोताओं का अनुरोध प्राप्त हुआ है

आइए उनके नाम पढ़ देते हैं। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य और अदिति। शिव कोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, सपना सेन, ओम द्वारकीबाई सेन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। अनारकली बाजार जगरौं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा सिंह पाठक। एताला जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनित कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। सनावद जिला खरगोन से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और उनके परिजन। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की फरमाइश हम तक पहुंची। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और उनके परिजन। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ग्राम खंगवाड़ा से दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र, राम, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि, लक्षिता सेन की फरमाइश हम तक पहुंची है और साथ ही फरमाइश की है ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। आप सभी श्रोताओं की एक ही पसंद है सपने साजन के इस फिल्म का गाना, समीर के बोल, संगीत नदीम श्रवण का और आवाजें अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की।

0: सपने साजन के इस फिल्म का गाना था ये अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल के युगल स्वर में।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से, और इस कार्यक्रम का अगला गाना है हमारे इन श्रोताओं की पसंद। अंबेडकर कॉलोनी बड़वा के पुष्पेंद्र रावल, इंदिरा, निहारिका, निशा और आयांश, राठौर मोहल्ला ग्राम जामली कला से माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, ग्राम छेगांव देवी से अशोक वाघे और वंदना वाघे, खंडवा से ही श्यामाबाई रायकवार और नारायण रायकवार ने हमें फरमाइश भेजी, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवांशी वाणी और आरवी खेड़ा, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, रिंग रोड नर्मदानगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक, भावना वर्मा, ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश वर्मा, पराली छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, लखनलाल देवांगन,

सावित्रीबाई देवांगन, ईशांत देवांगन और तनुजा देवांगन की फरमाइश हम तक पहुंची। साथ ही फरमाइश करने वाले श्रोता नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद और सोनल जाधव, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश, नूर मीणा, इरफान मीणा और कासिफ मीणा, अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, बठेणा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, संजय, अंशु और राजिम, जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि और दीपाली गोप की फरमाइश हम तक पहुंची है। आप सभी श्रोताओं की पसंद है बागी 2 फिल्म का गाना। इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है आरको ने। आवाज़ है आतिफ असलम की।

0: आर्को का लिखा और संगीतबद्ध किया बागी 2 फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज थी आतिफ असलम की।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
1: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके मीत ये गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश। गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत और उनके परिजन। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान और फैज़ान। ग्राम भैंसवाड़ी तहसील मलकापुर जिला महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक तन्वी और जयपाल यादव। छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन और ओवी। सौराष्ट्र राजकोट से जुली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी और निशा। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन और भावना। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन। शिव मंदिर हकीकतपुरा से हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और स्वीटी दीवाना। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक और परी। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश और पांडुरंग चंदन। जिला खरगोन सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना। अदलपुरा गोगांवा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। आप सभी श्रोताओं की पसंद तुम्हारी सुलू फिल्म का गाना, इसे लिखा है और आवाज़ दी है गुरु रंधावा ने, संगीत दिया है गुरु रंधावा और रजत नागपाल ने।

तुम्हारी सुलू इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना। गायक थे गुरु रंधावा। कार्यक्रम में अब पेश है परिणीता फिल्म का गाना, जिसे पसंद करने वाले श्रोता हैं। ग्राम दुलापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और इसरार। डुमराव शहर से वलीउल्लाह अंसारी और मेहताब अंसारी। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे। जमानिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति और गमरिया जमशेद स्वाति जायसवाल। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल और उनके परिजन। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी और शिवन्या गोस्वामी। बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मुणत। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश कर रहे हैं। अकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन और संजीव। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से फरमाइश कर रहे हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की फरमाइश। पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका, ग्राम नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिद्धा और अलका मिद्धा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो, ठाकुर राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति भदौरिया, उदय राज सिंह भदौरिया और अश्विन राज सिंह भदौरिया की भी फरमाइश हम तक पहुंची है। आप सभी श्रोताओं की पसंद परिणीता फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का और आवाज़ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: परिणीता फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपके मीत ये गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आपके मीत ये गीत।
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, कुछ ही पलों बाद हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज़ में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर। ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में यह ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1969 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चुनाव सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चुनाव सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चुनाव सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

0: नहीं।
1: 1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों बाद हम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भोपाल जिले में कल झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही मौसम खुशनुमा होने से शहरवासी खुश नजर आए। आपको बता दें कि इस बार मॉनसून ने 24 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था। इसके बाद करीब 9 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून फैल गया। हालांकि इसकी एंट्री सामान्य समय से करीब 9 दिन देरी से हुई है। देरी की वजह से किसान समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाए। हालांकि अब निरंतर बारिश होने के चलते किसान फसल की बुआई में लग गए हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम एक बार फिर जर्जर भवनों को लेकर सक्रिय हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी भवन मालिकों और सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक भोपाल में 3,435 भवन जर्जर हैं। इनमें 2,464 सरकारी और 971 निजी भवन शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 740 सरकारी और 17 निजी भवन अति जर्जर श्रेणी में हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। रेलवे प्रशासन ने रानी कमलापति अगरतला स्पेशल ट्रेन में LHB कोच लगाने का निर्णय लिया है। भोपाल के रानी कमलापति से ये ट्रेन 9 जुलाई और अगरतला से 12 जुलाई से LHB रैक के साथ चलेगी। वहीं 23 जुलाई और 26 जुलाई से संशोधित LHB कोच संरचना लागू होगी। इसके अलावा इंदौर

और जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने और पुणे दानापुर दैनिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 2548 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ जमीनी स्तर पर पोषण और बाल विकास सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। भर्ती के तहत 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों के सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डीन डॉक्टर भानु दुबे रहे। शुभारंभ डॉक्टर तृप्ति सक्सेना के स्वागत उद्बोधन सर्वधर्म प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। 5 दिवसीय मॉनसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की सूची के अनुसार करीब 11 अहम विधेयकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल की आरसीवीपी नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में विगत रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पल्स पोलियो अभियान सुमन पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की और स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट 2.2 पॉलिसी का अनावरण किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बीते रविवार को भोपाल में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। भोपाल जिले में करीब 3.32 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य रखा गया था। भोपाल के रविन्द्र भवन में बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के उद्योग निवेश और युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही जनवरी 2027 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। भोपाल में मुहर्रम पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकले मातमी जुलूसों में जहाँ करबला की शहादत को याद किया गया, फतेहगढ़ इमामे गेट, हमीदिया रोड, करोंद और पुराने शहर के अन्य इलाकों से सुबह से ही ताजिए निकले। अलम बुराक और धार्मिक परचमों के साथ जुलूस निकाले गए। जिला प्रशासन द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की व्यापक जांच की जा रही है। संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर कमियां मिलने पर कोचिंग संस्थान को सील करने की भी कार्रवाई जारी है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति विकसित की जा रही 6 कॉलोनियों पर एक साथ बुलडोजर कार्रवाई की है। करीब 82 करोड़ रूपए मूल्य की जमीन पर किए गए अवैध विकास कार्यो को हटाते हुए प्रशासन ने सड़कें, गेट और बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी हमने जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित की। लीजिए, पेश है कार्यक्रम नारी जगत।

स्वागत है सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। आज आपके साथ है आपकी सखी शीतल बाहेती। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। सखियों, आज 3 तारीख है, 3 जुलाई, और हम आपको बता दें कि आज यानी 3 जुलाई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। सखियों, प्लास्टिक बैग जो हर किराना दुकान, जनरल स्टोर, शॉपिंग मॉल और घर में हमें सुविधा तो देते हैं, लेकिन पर्यावरण पर इनका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ये एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक सदियों में विघटित होते हैं, जिससे हमारी धरती प्रदूषित होती है और वन्य जीव भी खतरे में पड़ जाते हैं। प्लास्टिक बैग के खिलाफ बढ़ते वैश्विक आंदोलन के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। सखियों, यह दिन प्लास्टिक कचरे को कम करने और टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। सखियों, प्लास्टिक बैग के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत एक जमीनी आंदोलन के रूप में हुई, जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। बैग फ्री वर्ल्ड पहल ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008

में जीरो वेस्ट यूरोप ने प्लास्टिक बैग प्रदूषण को लक्षित करते हुए एक अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त की दिवस की आधिकारिक घोषणा हुई। सखियों, प्लास्टिक बैग का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि वह टिकाऊ होते हैं। पेट्रोलियम आधारित पदार्थ पॉलीइथिलीन से बने होने के कारण इन्हें विघटित होने में 500 से 1000 वर्ष लग सकते हैं। पूरी तरह से विघटित होने के बजाय ये सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में टूट जाते हैं, जो पर्यावरण में अनिश्चित काल तक बने रहते हैं। सखियों, प्लास्टिक बैग का उत्पादन भी जलवायु परिवर्तन को गति देता है। जीवाश्म ईंधन से निर्मित होने के कारण इनके निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सहित भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक बैग भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जिससे वैश्विक ताप में वृद्धि होती है। सखियों, प्लास्टिक बैग से छुटकारा पाने के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है दोबारा इस्तेमाल होने वाले कपड़े के बैग। डाइऑक्साइड और मीथेन सहित भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक बैग भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जिससे वैश्विक ताप में वृद्धि होती है। सखियों, प्लास्टिक बैग से छुटकारा पाने के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है दोबारा इस्तेमाल होने वाले कपड़े के बैग, जो कपास, जूट या कैनवास जैसी सामग्रियों से बने होते हैं। ये बैग टिकाऊ और धोने योग्य होते हैं और कई वर्षों तक चल भी सकते हैं, जिससे रोजमर्रा के उपयोग के लिए ये आदर्श बन जाते हैं। कागज के थैले भी एक विकल्प है। सखियों, फल और सब्जियां ले जाने के लिए जालीदार थैले बेहतरीन विकल्प होते हैं। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल बैग जैसे नवोन्मेषी समाधान भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। कॉर्न स्टार्च या कसावा जैसी वनस्पति आधारित सामग्रियों से बने ये बैग पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में बहुत तेजी से विघटित हो जाते हैं, और जो लोग DIY प्रोजेक्ट्स का आनंद लेते हैं, वे घर में पुरानी टी शर्ट, जीन्स या कपड़े के टुकड़ों से बने हुए बैग यूज कर सकते हैं। ये मजबूत और दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग हैं, जिनसे कि कचरा भी कम होता है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। सखियों, इसलिए प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने का संकल्प लें। अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों को भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। सखियों, हमारा हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है, और साथ मिलकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह का निर्माण कर सकते हैं। और सखियों, ये थी आज की चर्चा, और अब सुनते हैं ये गीत।

और सखियों, आज है माह का पहला शुक्रवार और अब क्रम है मिसाल का। सखियों, आज हम जिन सखी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरना और उन्हें संवारना इनका पेशा है। लेकिन आज हम इनके हुनर के साथ साथ इनके फौलादी हौसले के बारे में भी बात करेंगे। परेशानियों से जूझते हुए अपने काम के प्रति इनका समर्पण हर महिला के लिए एक मिसाल है। आइए मिलते हैं ब्यूटिशियन सरला शर्मा से।

0: सखियों, कहते हैं कि वक्त जब सबसे बड़ी परीक्षा लेता है तब इंसान के भीतर का असली हौसला बाहर आता है। सखियों, आज हमारे साथ एक ऐसी ही सशक्त महिला हैं जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को झेला है। जी हाँ सखियों, अपने जीवन से जीवन साथी का चले जाना सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उनके कदम डगमगाए नहीं। वह पहले भी आत्मनिर्भर थी और आज भी इस गहरे दुख के बीच भी अपने ब्यूटी पार्लर के जरिए समाज के सामने मजबूती से खड़ी है। हम बात कर रहे हैं हमारी सखी सरला शर्मा जी की। आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सरला जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सरला जी, सबसे पहले तो आप हमारी सखियों को अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपका मायका कहाँ का है और क्या एजुकेशन है आपकी।
1: मैं खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट का मेरा मायका है और मेरा एजुकेशन बीए सेकंड ईयर तक हुआ है और 2 साल का मैंने डिप्लोमा करा है और 2001 में मेरी शादी हुई।
0: अच्छा, और शादी के बाद से आप खंडवा में ही हैं फिर।
1: हाँ, शादी के बाद मैं खंडवा आई।
0: तो सरला जी, ये बताइए कि आपने ये जो पार्लर है, ब्यूटी पार्लर, इसकी शुरुआत कब से की है?
1: 94 में मैंने कोर्स करा और 95 से मैंने शुरुआत मैके से ही करी थी क्योंकि मैंने मैके में ही कोर्स करा था और 97 में मैंने और एक डिप्लोमा मुंबई से लिया था और उसके बाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था और फिर मैंने 180 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया तो मेरी क्लास को दिल्ली से अवार्ड मिला था।
0: अच्छा।
1: तो मेरा फिर 2001 में मेरी शादी हुई, फिर मैं खंडवा आई।
0: तो फिर यहाँ पे जब आपकी शादी हो गई तो फिर आपने पार्लर की शुरुआत यहाँ पे भी घर से की या दुकान से की, कहाँ से की आपने?
1: नहीं, पार्लर की शुरुआत तो शुरू में तो जगह नहीं थी और फिर सबका विश्वास भी जितना था कि ये करती नहीं करती, तो फिर मेरे को घर के अंदर ही एक छोटा सा रूम था और 10,000 रुपये से करी, उसमें ही फर्नीचर प्रोडक्ट वगैरह छोटी मोटी मशीनें, उस टाइम पे इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तो भी मैंने मेरे हुनर को जारी रखा और मेरे हुनर को मैंने जिंदा रखा। 8 साल तक मैंने पार्लर चलाया।
0: सला जी, घर से पार्लर चलाने में आपको क्या क्या परेशानियाँ आईं?
1: मुझे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला बच्चा हुआ, फिर वो शांत हुआ, फिर उसके बाद घर में मेहमान आना जाना, घर में छोटी सी जगह, उसी में सब एडजस्ट करना, तो भी मैंने फिर दूसरा बच्चा आया।

0: तो वो छोटा था तो उसको संभालते हुए भी मैं बाहर के मेकअप भी लेती थी, बच्चे को भी साथ में ले जाती थी कभी कभी, वो रोता था तब भी मैं मेकअप वगैरह मेरा जारी रखती थी। और हाँ, मुझे घर के कामों के लिए भी सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि मैनेज करना था कि अपने को अब पार्लर खोलना है, कस्टमर आएंगे तो खाना भी बनना चाहिए, नाश्ता भी बनना चाहिए, मेहमान आए उनका भी सब व्यवस्था होना चाहिए। कोई ने ये नहीं बोलना चाहिए कि ये पार्लर कर रही है तो घर का व्यवस्थित नहीं कर रही है, तो ये भी मेरी पूरी जिम्मेदारियाँ थी। तो मैं सुबह 4 बजे से उठती थी, तो मेरा पूरा काम करना और पार्लर भी संभालना ये मैं पूरा उस दौर में करती थी।
1: और घर पे जो कस्टमर आते थे उनको लेके कहीं कोई परेशानी गई आपको?
0: नहीं, ऐसी परेशानी तो कुछ नहीं गई। जैसे कभी बच्चा रोता था तो बच्चे 2-3 महीने का ही था तब, उस टाइम पे बहुत परेशानी गई, तब भी मैंने मेरी प्रैक्टिस को जारी रखा और कस्टमर का काम मैं ईमानदारी से करती थी, तो आज मैं मुकाम पे हूँ।
1: सरला जी, आपने जो पार्लर का काम किया घर से, तो उसमें आपको कितनी सफलता मिली? आपने बाद में दुकान कब खरीदी?
0: 2001 से 2009 तक मैंने घर घर के अंदर ही पार्लर चलाया और बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मुझे भी, मेरे पति को भी लगा कि नहीं ये कुछ कर सकती है, तो उनने, मेरे पति ने और मेरे जेठ जी ने ये बाहर दुकान किराए से लेके दी। फिर मैंने कुछ दिनों तक, 2 साल तक किराए से चलाई। उसके बाद वो भैया बोले कि पंडित जी हमको ये दुकान बेचना है, तो हमने सोचा कि अपन क्यों खरीदी क्यों नहीं लेते, कुछ खरीदी। और उसके बाद हमको बैंक से लोन नहीं मिल रहा था, तो फिर अब बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई थी। तो क्या करना, पैसे भी नहीं है पास में। फिर मैंने, मेरी ज्वेलरी थी वो पूरी ज्वेलरी तोड़ी और ब्याज से पैसा लिया, और उसके बाद मैंने पार्लर के ही इसमें मैंने पूरा उसको ब्याज का
1: जो
0: पैसा,
1: पास की सेविंग्स थी
0: हाँ
1: आपकी?
0: सेविंग्स थी पूरी मैंने कर दी। ब्याज का भी भरती थी महीने का, वो पार्लर से ही भरती थी। फिर उसके बाद मैंने मेरा सोना भी बना लिया था,
1: अच्छा,
0: यानी सब पार्लर से ही हुआ।
1: अच्छा,
0: इसी बीच फिर मैंने ज्वेलरी का भी काम करा और पार्लर भी चलाती थी,
1: आर्टिफिशियल ज्वेलरी।
0: आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और पार्लर का भी काम करती थी।
1: हाँ।
0: जलगांव खानदेश से मैं ज्वेलरी भी लाती थी और कॉपर पॉलिश वगैरह, एडी वगैरह, जैसे पायल है, बिछिया है, तो ये लेडीज संबंधी में ज्वेलरी, मेकअप का पूरा सामान ये पार्लर के माध्यम से लेडीज़ आती थी तो वो मेरे से खरीदती थी, तो वो भी मैंने चालू करा। फिर 2019 में मैंने एक बाजू में दुकान बिक रही थी तो उसको भी खरीदा, फिर
1: अच्छा।
0: उसको भी बनाया। वहाँ मैंने एक 50 फीट की अच्छी बड़ी सी दुकान निकाली थी जो ज्वेलरी के लिए,
1: अच्छा, और मकान भी आपने खुद का
0: मकान
1: फिर
0: भी
1: नया
0: बनाया उसके
1: बनाया?
0: ऊपर, मैंने फिर मकान भी बनाया।
1: अच्छा।
0: सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई थी। 2 साल फिर नए मकान में हम लोग शिफ्ट हुए कि नीचे दुकान, ज्वेलरी की दुकान डाल देंगे। फिर अचानक से मेरे पति का हार्ट फेल हुआ, अचानक हार्ट फेल हुआ और एक ही आधे घंटे में ही सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी ज़िंदगी मानो थम गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
1: सरला जी, आपके जीवन में जो इतनी बड़ी क्षति हुई उससे उबर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो ऐसे समय में खुद को समेट कर दोबारा पार्लर की जिम्मेदारी संभालना कितना मुश्किल था? और किसने प्रेरणा दी आपको कि आप वापस इस काम को संभाल पाई?
0: वह समय मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था। शुरुआत में खुद को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने सोचा कि जीवन रुकता नहीं है, अपने परिवार बच्चे के लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो मेरी बहनों ने मुझे एक प्रेरणा दी, कि मेरे बेटे ने मुझे प्रेरणा दी और बोला झांसी की रानी है रानी लक्ष्मीबाई और अपनी अहिल्याबाई होड़कर रानी जीजा माता है, उनने कितना संघर्ष करके कितना राज्य चलाया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सही में अपनी तो चुनौतियाँ कुछ भी नहीं है इनके आगे, तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो मैं बाहर निकली, नहीं तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि कैसी जाऊँगी, कैसी करूँगी, कैसा मैं इतना संघर्ष कर पाऊँगी। लेकिन मेरे बेटे का भी साथ रहा और मेरी बहनों का भी साथ रहा, और ये वीरांगनाओं के मेरे सामने इतिहास के उदाहरण भी बहुत थे, और संघर्ष करते समय वीरांगनाओं को सामने लाना बहुत जरूरी रहता है, इतिहास पढ़ना भी बहुत जरूरी रहता है। तो अपन कुछ संघर्ष करते करते कुछ कर सकते हैं,
1: तो
0: हिम्मत नहीं हार सकते।
1: कितना टाइम लगा आपको पार्लर वापस आने में?
0: डेढ़ साल लगा मुझे।
1: सला जी, एक कामकाजी और आत्मनिर्भर महिला होने के नाते इस दुख की घड़ी में आपके जो ये हुनर है पार्लर का, इसने आपको समाज

0: परिवार के सामने किसी पे निर्भर होने से बचाया, आप मानती हैं?
1: मुझे तो मेरे हुनर ने, मेरी कला ने,
0: हाँ,
1: अपनी कला को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। तो मेरी कला ने मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया, मेरा सिर ऊपर रखा। तो मैं यही चाहूंगी कि सभी महिलाएं कुछ ना कुछ अपने हुनर को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहे, कुछ ना कुछ करती रहे।
0: अभी फिलहाल क्या चुनौतियां हैं आपके सामने?
1: आज भी हर दिन नई चुनौतियां आती है, बदलते समय के साथ नए ट्रेड सीखना, ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरना और अपने काम को लगातार बेहतर बनाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हर चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानती हूँ। और मुझे मेरे आगे तो सबसे बड़ी चुनौती मेरा बेटा है, मेरे बेटे को बड़ा करना है, क्योंकि उसका भविष्य अभी बना नहीं है, तो उसका भविष्य मुझे बनाना है, उसका पूरा शादी ब्याह सब मुझे करना है। तो अभी आगे चल के तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आने वाली है और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और कब कोई सी चुनौती आ जाए वो कह ही नहीं सकते। अभी मेरा बेटा जो है वो MBA की पढ़ाई कर रहा है।
0: आज समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो किसी बड़े दुख या अकेलेपन के बाद टूट जाती है, तो आप जैसी आत्मनिर्भर महिला जो इस मुश्किल वक्त में भी डट कर खड़ी है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सभी बहनों और सखियों से यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पर विश्वास रखें, परिस्थितियां कैसी भी हो हिम्मत मत हारिए, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और आत्मनिर्भर बनिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जैसे मृग के पास कस्तूरी रहती है पर उसको पता नहीं रहता है, लेकिन हर अपने व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कला ईश्वर ने देके भेजी है, तो उसको आप पहचानो, मृग की तरह अपनी अवस्था मत करो। जैसे हर पौधा औषधि है, उसमें कुछ ना कुछ गुण है औषधि, वैसे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कलाएँ, कुछ ना कुछ गुण भरे हुए हैं, तो उसको साकार करो, उस पर मेहनत करो और अपनी कला को पहचानो। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। और अपनी बेटियों को पढ़ाओ, कह नहीं सकते कि कौन सी परिस्थिति कब कैसी आए। आज मेरे ऊपर जो परिस्थिति आई, तो आज मैं मेरे पैरों पे खड़ी थी, तो मुझे कुछ भी तो करना तो पड़ता ही है, लेकिन आज अपने पास कुछ अगर कला है या कुछ अपन कुछ जॉब कर रहे हैं, तो अपना इतना अपने को किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरी महिलाओं से यही विनती है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए।
0: सरला जी, आपके इस हौसले को देखकर बस यही पंक्तियाँ याद आती है कि तूफान भी हार जाते हैं वहाँ जहाँ कश्तियाँ जीत पर होती है। इस मुश्किल वक्त में बिना रुके आगे बढ़ने और समाज की दूसरी महिलाओं को यह सिखाने के लिए कि नारी कभी कमज़ोर नहीं होती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, अभी मिसाल के अंतर्गत हमने मुलाकात की थी ब्यूटीशियन सरला शर्मा से। उम्मीद है आपको आज का क्रम मिसाल पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं ये गीत।

सखियों, हम महिलाओं के लिए गहनों का खास महत्व होता है। ज्वेलरी पहनने के बाद खूबसूरती दोगुना बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चमक खो जाती है या कई बार वो ज्वेलरी काली पड़ जाती है। तो आज जानते हैं घरेलू चीजों से ज्वेलरी साफ करने के कुछ तरीके। सखियों, यदि अंगूठी काली पड़ गई है तो अंगूठी को साफ करने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडे में 1/2 चम्मच नमक और गुनगुना पानी डालकर एक थिक पेस्ट तैयार कर लें और फिर अंगूठी में लगाकर कुछ देर के लिए इसे छोड़ दें। फिर उंगलियों की मदद से इसे अच्छे से रगड़ लें और ठंडे पानी से साफ कर लें। इसी प्रकार यदि इयररिंग्स काले पड़ गए हैं या इनकी चमक खो गई है तो इसे चमकाने के लिए टूथपेस्ट को टूथब्रश में लगा लें और इसे अच्छी तरह से रगड़ लें और फिर ऐसे ही छोड़ दें। जब टूथपेस्ट सूख जाए तो सूखने पर इसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसी प्रकार नेकलेस चमकाने के लिए नींबू के रस में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर इस घोल में हमारा नेकलेस है या चूड़ियां है या कोई भी ज्वेलरी है उसे हम इसमें डाल सकते हैं और 10 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसी प्रकार पर्ल ज्वेलरी चमकाने के लिए शैम्पू का प्रयोग करें। शैम्पू को पानी में घोलकर इसमें पर्ल ज्वेलरी डाल दें और अच्छी तरह से साफ कर लें। सभी ज्वेलरियां साफ करने के बाद इनको सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछना ना भूलें। सखियों, देखिएगा ज्वेलरी चमक जाएगी। तो ये थी आज की टिप्स और अब सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे नारी जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है निमाड़ी लोकगीत। कलाकार हैं मालती गवली और साथी।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: अभी आप सुन रहे थे मालती गवली और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
3: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल से।

लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये गीत। संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। एल्बम का नाम था वर्षा ऋतु।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना

0: के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: मिलो न तुम तो हम,
0: फिल्म है हीर राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं।

0: जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में. इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था. इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है.

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थीं और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घेराए बदरा सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहाँ पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से, मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और

कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं। और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है। पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमज़ोर तने वाले पेड़ हैं आसपास। तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएँ खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था, सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है। हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

राजकुमार फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना। और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन।

सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है। झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिक

0: ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ

लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौशमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी

भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नजारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, खतरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी ज़मीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है। भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है, जहां प्रकृति, संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं, तब मन के सोने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है, जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं। जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है, जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो, तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये झूले वाला ही गीत बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। है बहु बेगम,

बहु बेगम फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है, तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार ज़रूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊँचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन के फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जाए घिर आए, कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब, अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियाँ आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं, ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा, आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में, आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है, और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है, लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है, राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज

0: की फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो ज़रा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना।

0: मस्ताना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफ़र के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थीं। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं। शुक्रिया अदा कर

रहे इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई ख़ास बात। संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र, उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहाँ के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, ज़रा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

जानकारी दिए। एक या कई श्रोताओं ने कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफर आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस

0: आज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को शोभा

0: ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर आठ प्रांतों के प्रतीक आठ कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। आठ कमल भारत के उस समय के आठ प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।
1: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
2: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
3: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद

कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पावन अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर समस्त शिवभक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की तरह यह यात्रा सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया, जिसका अर्थ है कि जिन भगवान के स्वरूप को वाणी, बुद्धि और कठोर तपस्या से भी नहीं जाना जा सकता, वे केवल भक्ति भाव से प्राप्त होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। 57 दिनों की ये पावन यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर संपन्न होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं और खदान मालिक ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख तथा घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई है। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी घटना की जानकारी मांगी है और कर्नाटक प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सेहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज से भील चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की शलाका प्रदर्शनी शुरू हुई। शिवपुरी के नरवर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 स्थानों से 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई। बुरहानपुर के निर्माण रेंज के DIG ने अपराध समीक्षा की बैठक ली और महिला अपराधों तथा साइबर क्राइम पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पन्ना जिले के अजगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में

0: प्राचीन भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये 2-3 भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
0: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
1: जी,
0: वो मैं सुनना चाहूंगी।
1: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी। आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवाते पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है, कहीं घूमने फिरने आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है।
0: हाँ वो तो है
1: ना।
0: जी, ये तो सहयोग परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये मुझे
1: मेरी
0: जी

0: अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सच्चे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
0: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है, मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे के पास से जो बात कर रही हूँ ना
1: जी,
0: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ, हमारा एक माले का घर है ना वहाँ कर रही हूँ
1: जी,
0: तो मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
0: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है किस तरह जाना है किस तरह आना है तो मैं अपने आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है।

0: फ्लैट में कर रही हूँ। हमारा एक माले का घर है ना, वहाँ कर रही हूँ
1: जी।
0: तो मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
0: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं। आप इसको किस तरह से लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए
0: जिस हाल में रखे उस हाल में जी, लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना
1: जी?
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या
1: एक
0: बात,
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें।
0: पेन नेम है आपका लहरें?
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी
0: जी,
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख, सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं।
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश मेरे कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल
1: सुनाइए। और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हो, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी,
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यू दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी

0: कहानियां सुन रही हैं, उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ, ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी बनाती सिर्फ, चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती।
0: अच्छा।
1: फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
0: जी
1: टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
1: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा बहुत जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते, बस ज्यादा करके भी अपने तबीयत

0: देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे, मेरा भाई और मैं, हम दोनों रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए, हाँ तो भाई की ही रहती मैं।
1: तो देखिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं।
0: मैम मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
1: जी ले लीजिए।
0: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है
1: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना।
1: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आ रहा है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयान नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू, तेरे प्यार

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी? सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ,
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं? और क्या करती
1: हाँ,
0: हैं, क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ हाँ
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और की। उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी।
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है, हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
0: जी। यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
0: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन

0: सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: बस नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही रहते हैं कुछ
0: जी।
1: नहीं। हाँ।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना?
1: हाँ।
0: जी, घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता
1: हाँ,
0: रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष।

नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुँचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाज़ें, पर ये लोग उन आवाज़ों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियाँ होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में ज़रूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीज़ें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिला कर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती? किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में

0: दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपने पन की गुनगुनी आँच होती।
1: नानी

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

0: और सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।
1: ये

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें, चंदा ने हुंकारा भरा। हाँ, ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा,

हाँ, थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने से

इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब? कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, हम कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है, प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग।

0: कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए। आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा? हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं। प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना। उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहाँ आया,

प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है।

नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या। नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता। दूसरी बात हुई, उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहाँ नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहाँ और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हों। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफ़ेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ निभाती।

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुराकर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छायागीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूँ तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूँ जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हो, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर दे

0: इतना ही, दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन,
0: आकाशवाणी खंडवा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं

0: बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी।

0: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
1: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भोज वृक्ष?
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
1: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा,
1: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोदकर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है, इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं।
3: नमस्कार।
4: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है।

0: इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हर नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगा कर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ

0: अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
2: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
3: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख

0: निरंजन
1: अलख निरंजन। ए साधु बाबा।
0: बच्चा
1: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
0: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
1: है?
0: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
1: अच्छा?
0: हाँ,
1: बहुत बड़ी फौज है।
0: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
1: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
1: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
1: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुषवेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त और कार्यक्रम का होस्ट संचित चौकड़े, आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी लेकर। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आज आप जानते हैं, आज है माह का पहला शुक्रवार और आज होता है आपके मन का क्रम यानी गीतों भरी कहानी। तो आज के क्रम में हमारी कहानी कौन सी है, यह हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में आगे। तो आज उससे पहले हम जान लेते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, फिंके नदी किस देश में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन यानी EPM किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि हम इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं कार्यक्रम के अंत में। तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिएगा कार्यक्रम युवाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आज का युग डिजिटल युग यानी कि तकनीकी का युग है। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, कहीं न कहीं उतना ही साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ाया है। साइबर फ्रॉड यानी इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करना। वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुका है। साइबर फ्रॉड कई प्रकार के होते हैं, इनमें फिशिंग, OTP फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप, सोशल मीडिया हैकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी और QR कोड स्कैम प्रमुख है। अपराधी अक्सर लोगों को फोन कॉल, ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी जानकारी देकर उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी हासिल कर लेते हैं। कई बार लोग लालच या डर या जल्दबाजी में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, साइबर फ्रॉड का प्रभाव केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों का मानसिक तनाव भी बढ़ता है। कई मामलों में पीड़ित व्यक्ति अपनी मेहनत की पूरी कमाई भी गंवा देता है। इसलिए डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना और जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनानी चाहिए। कभी भी अपना OTP, पासवर्ड, बैंक खाता विवरण या ATM पिन किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं एप्लीकेशंस का उपयोग ही करना चाहिए। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में सुरक्षा अपडेट नियमित रूप से करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी का संदेह हो तो तुरंत बैंक और संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। दोस्तों, सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे प्रभावी सुरक्षा स्वयं की जागरूकता और सतर्कता ही होती है। हमें यह समझना होगा कि डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साइबर फ्रॉड से बचाव का सबसे बड़ा उपाय सावधानी, जागरूकता और सतर्कता है। यदि हम डिजिटल माध्यमों का समझदारी से उपयोग करेंगे तो हम स्वयं को और अपने समाज को साइबर अपराधों से सुरक्षित कर सकेंगे। अगर हम स्मार्टफोन चलाते हैं तो स्मार्ट भी बनना चाहिए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं फिल्म मेकिंग के ऊपर ये हमारी खास बातचीत। बातचीत की है संचित चौकड़े ने सिद्धार्थ व्यास से। आज हमारे साथ मौजूद है सिद्धांत व्यास, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद संचित जी मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: सिद्धांत जी, पहला प्रश्न हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर कोई हमारे युवा साथी हैं जो फिल्म मेकिंग की लाइन से जुड़ना चाहते हैं या फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम उनके लिए क्या होगा कि वो कैसे इस ओर बढ़े।
4: इस ओर बढ़ने के लिए वैसे तो दो ही तरीके हैं, या तो आप किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लीजिए या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे चली जाइए और अपने नेटवर्किंग स्टार्ट।

0: दीजिए। बट इससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। जैसे काफ़ी डिपार्टमेंट हैं हमारे फिल्म मेकिंग में, डायरेक्शन बोल सकते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं, एडिटिंग बोल सकते हैं, मेकअप बोल सकते हैं, सेट डिज़ाइनिंग बोल सकते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन बोल सकते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है और आप किस डिपार्टमेंट से आगे बढ़ना चाहते हैं।
1: तो दोस्तों, आपने सुना कि पहले आपको अपनी रुचि को ढूंढना होगा कि आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं। तो सिद्धांत जी, क्या जो हमारे युवा साथी इस ओर बढ़ना चाहते हैं उसके लिए उन्हें कोई खास ट्रेनिंग लेना होगी?
0: वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ये कहते हैं कि आपको फिल्म स्कूल की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज अगर चाहिए किसी चीज़ का, तो आपको पहले उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप पहले फिल्में देख सकते हैं, फिल्मों से शुरुआत कीजिए, वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कैसे कैमरा एंगल यूज़ करना है, कलर, लाइटिंग, एडिटिंग, एक्टिंग। पर जैसे कि मैंने खुद ने फिल्म मेकिंग कोर्स किया हुआ है मुंबई से, काफ़ी सारी फिल्म इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में अवेलेबल है। उनमें से कुछ फेमस तो हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, FTI है पुणे, SRFTI कोलकाता, ये सब हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं, काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं आजकल, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं फिल्म मेकिंग को। पर अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखना है तो आप फिल्में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ एंटरटेनमेंट के माध्यम से नहीं देखिए, सीखने के माध्यम से देखिए।
1: आपने अभी बताया FTI पुणे और कोलकाता में इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसमें एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है?
0: FTI पुणे की एडमिशन प्रोसेस ये है कि वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, मैंने भी दी थी, मेरा हो नहीं पाया था। JET करके एग्ज़ाम आती है, तो आपको पहले वो क्लियर करनी पड़ती है और फिर आपका एडमिशन होता है वहाँ पे, और सीट्स काफ़ी कम होती है वहाँ पे, तो आपको मेरिट में आना पड़ता है। ये प्रोसेस है FTI पुणे के लिए।
1: तो सिद्धांत जी, ये बताइए कि इन इंस्टीट्यूट्स में किस प्रकार के कोर्सेज किन किन विधाओं में कराए जाते हैं?
0: जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको पहले डिपार्टमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपको आप अपना डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं। आप डायरेक्शन में जाना चाहेंगे तो आप डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग में जा सकते हैं, आप एडिटिंग में जा सकते हैं, एक्टिंग का भी कोर्सेज कराते हैं FTI, आप वहाँ जा सकते हैं, आप साउंड के लिए भी जा सकते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन FTI प्रोवाइड करता है।
1: ये तो हुई फिल्म मेकिंग की बात, अब जो हमारे युवा साथी अभिनय की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ खास है?
0: एक्टिंग की ओर बढ़ना चाहता है कोई, तो मैं यही कहूँगा, एक्टिंग सीखी नहीं, नर्चर की जा सकती है। जैसे एक पौधे को उगाने के लिए हमें उन्हें निरंतर पानी देना पड़ता है, वैसे ही एक्टिंग भी है। तो आप NSD में एडमिशन ले सकते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या फिर आप FTI में भी ज्वाइन कर सकते हैं। FTI को मुंबई जाके डायरेक्ट ऑडिशन भी दे सकते हैं। ये तरीका काफ़ी लोग अपनाते हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट्स के चक्कर नहीं काटने, तो ये तरीके हैं, आप एक्टिंग में जा सकते हैं। आप थिएटर भी कर सकते हैं, थिएटर मुंबई में भी आजकल काफ़ी फेमस हो गया है, काफ़ी बड़े बड़े शोज हो रहे हैं मुंबई में, तो आप वहाँ पे थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
1: यकीनन आज की खास बातचीत हमारे युवाओं के लिए उपयोगी होगी। आप हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी सिद्धांत व्यास से संचित चौकड़े की खास बातचीत, विषय था फिल्म मेकिंग में बढ़ते आयाम। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्रम यानी कि गीतों भरी कहानी की ओर। आज की कहानी अनिश्चित भेंट। नए शहर के नए दफ्तर की शाम थोड़ी अजीबोगरीब थी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड मुझे होटल के रूम से बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं दे रही थी, पर करता भी क्या, कमरे की दीवारों का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसे मैंने लगातार देखकर मन में बातें नहीं की होगी। खिड़की से नीचे झांकने पर भी डिनर का स्वाद लेते कई दोस्त, प्यारे प्यारे कपल, बच्चों के साथ फैमिली दिखते। उन्हें देखकर इस पराए शहर में मुझे अपनों की ओर जोरों से याद आने लगती। फिर भी हिम्मत करके मैं रूम से बाहर निकला कि चलो, खाना तो हो ही गया है और मुझे फोन का चार्जर भी चाहिए था, क्योंकि आते वक्त मैं घर से लाना भूल गया था, और यह भी सोचा कि शहर भी तो छोटा ही है तो दो कदम ही नाप लेते हैं। अब मैं जब बाहर निकला और मैं अपने द्वंद भरे कदमों में चल ही रहा था कि मुझे अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, सर। लगभग 25 की उम्र होगी उस आवाज की, आंखों पर चश्मा और चश्मे से झांकती बड़ी बड़ी आंखें, कमर में लगा एक साइड बैग जिसमें से सामान किसी ज्वालामुखी के लावे के समान बाहर गिरने को कर रहा था, और एक चोटी। मेरे बगल में गाड़ी आई और ब्रेक लगे। मैं कुछ समझ पाता इतने में मुझसे कहा गया, सर कहां जा रहे हैं, बैठिए हम आपको छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था। इतने में ही सामने से मेरा नाम पुकारा गया, ईशान सर।

आप ही हो ना? मैं अब और कोतूहल में कि भाई ये है कौन। तब सामने से जवाब आया, सर मैं सुयश हूं, दूरदर्शन में कैजुअल कंटेंट राइटर हूं। मैं घर जा रहा था, आपको देखा तो रुक गया। चलिए छोड़ देता हूं, बताइए कहां जाना है। मैं स्तब्ध था और प्रसन्न भी कि अभी तो हम पहले मिले भी नहीं है और ना ही कोई टेलीफोनिक चर्चा हुई है, फिर इसने पहचान कैसे लिया। मेरे पूछने पर बताया कि सर आपके आने की चर्चा चल रही थी ऑफिस में कि नए प्रोग्राम हेड ईशान सर आने वाले हैं, जो कि पहले इंदौर में थे, अब अपने शहर प्रमोशन पर आए हैं। अब मैं कुछ सोच ही रहा था कि इतने में फिर जनाब ने कह दिया, सर चलिए आपको एक खंडवा का टाउन टूर करवा देते हैं। मुझे भी वैसे करने के लिए कुछ था नहीं, होटल जाकर सोना ही था और भाई ने इतनी बातें कर दी थी कि अब तो थोड़ा मूड फ्रेश करना ही पड़ेगा, तो मैंने भी कह दिया हाँ हाँ चलो चलो। अब हर एक कदम पर मुझे शहर की प्रमुख इमारतें, प्रमुख लोग, सड़कें, कॉलेज, दुकान, डिवाइडर, रेलवे ब्रिज जो बन गया है वो, और जो कई सालों से अधूरा है वो, सारा सब कुछ डिटेल में बताया जा रहा था। बीच बीच में एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए मंजे हुए पायलट की तरह इशारे भी किए जा रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा शहर भ्रमण का फैसला गलत तो नहीं हो गया, और मैं सोच रहा था कि इतना भी क्या अपने शहर के लिए ऑब्सेस्ड होना। ठीक है भाई, सभी शहर की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, पर अगले ही पल मुझे वो दिन याद आ गया जब बाबूजी के बचपन के दोस्त बनवारी काका पहली बार इंदौर आए थे। तब मैंने भी उन्हें ऐसे ही अपने स्कूटर पर पीछे बैठा कर इंदौर का कोना कोना घुमाया था। वो जगह भी बताई थी जिनका कोई औचित्य नहीं था, पर जोश और काका का ये कहना कि अरे वाह गुड्डू, तुम्हें तो कितना कुछ पता है शहर के बारे में। काका मुझे गुड्डू कहकर बुलाते थे, आज लग रहा है कि मैं बनवारी काका हूं और सुयश गुड्डू। मेरे मुंह से निकल गया, अरे वाह गुड्डू, तुम्हें तो कितना कुछ पता है शहर के बारे में। सुयश ने अचानक हल्के से गर्दन घुमा कर कहा, सर गुड्डू नहीं, सुयश सुयश। सर ये शहर ऐसा ही अच्छा अच्छा है, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के नजारों में अच्छे अच्छे लोग गुम हो जाते हैं। हम ठीक है, यहाँ किशोर कुमार तक को खंडवा का मोह छोड़ नहीं पाया। इतना कहकर एक खंडर के सामने उसने गाड़ी लगा दी। मैंने पूछा, क्या है ये? अब जैसे भूल भुलैया फिल्म में एक सीन है जहां अवनी मंजुलिका के गहने कपड़े आदित्य यानी अक्षय कुमार को एकदम फुल इंटरेस्ट के साथ बताती है, वैसे ही यहीं अब सुयश मुझे किशोर कुमार की गाथाएं सुना रहा है कि किशोर कुमार यहां रहते थे, यहां बैठते थे, न जाने कहां कहां की स्टोरियां सुनाई। अब मुझे लग रहा है कि कल को अगर किशोर दा के जीवन पर कोई पॉडकास्ट हुई तो मैं जरूर कर सकता हूं, इतना डेटा तो मेरे पास हो ही गया है। होटल से निकलते टाइम सोचा था कि शहर छोटा होगा, दो कदम में नाप लेंगे, पर जब सुयश की बातों ने जो शहर घुमाया वो मेरी उम्मीद से भी कई गुना बड़ा निकला। मैंने कहा, चलो सुयश लेट हो गया है, अब चलना चाहिए। पर शायद सुयश ने मेरी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं, वो तो अचानक बस एक गीत गुनगुनाने लगा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए।

ने भी मुस्कुराते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार किया। कहने लगे, और कैसा लग रहा है खंडवा में? अच्छा ही लग रहा होगा। इस शहर की खूबी यह है कि यह शहर इंद्रधनुष की रंगों से भरा हुआ है। रंग जैसे कला, संस्कृति, भक्ति, साहित्य, और इन रंगों में रहते हैं यहाँ के लोग, जो कि और भी ज्यादा कलरफुल हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था सर, जब मैं यहाँ पहली बार आया था। बहुत कोसा भी मैंने अपने ऊपर वाले अफसरों को कि कहाँ फेंक दिया यार। मेरी जगह ट्रांसफर होकर इंदौर जा रहे मुगुल सर ने मुझसे कहा था कि आपके विचार और आपके इरादे बिल्कुल बदलेंगे जब आप यहाँ रहना शुरू करोगे, यहाँ के लोगों में रहोगे। और आज मैं भी आपसे मुकुल सर की तरह यही कहूंगा। अब देशपांडे सर की जो बातें सुनकर और सुयश की कल की आओ भगत देखकर, अगर कोई और होता तो बिल्कुल पिघल जाता, कहता, अरे वाह क्या बात है, कितना बढ़िया शहर है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे अब भी अपना शहर ही दिल के सबसे ज्यादा करीब था। अब ऑफिशियल रेसिडेंस मिलने में अभी थोड़ी प्रोसेस बाकी थी, तो मैंने शहर की एक कॉलोनी में 2 BHK रेंट पर ले लिया। लेते वक्त ये भी कहा कि देखो छोटे शहर के लोगों को, सोचा कि कैसा मकान बना लिया, कुछ भी उटपटांग है। पर टाइम भी मुझे निकालना था, तो मन को दिलासा भी दे लिया कि चलो ठीक है, रह लेते हैं। अब घर से बाहर सड़क पर बस इतनी जगह थी कि एक बार में एक ही 4-व्हीलर निकल सकती थी। यही कारण था कि मैं अपनी कार नहीं, अपनी 2-व्हीलर से ही आना जाना करने लगा। एक दिन ऑफिस से जब घर आया तो देखा कि घर के सामने किसी और की गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने हॉर्न बजाया, पर हॉर्न बजाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 2-3 बार जोर जोर से हॉर्न बजाया, तब पड़ोस से 50 से 55 साल के हेयर डाई की जवानी लिए एक अंकल बाहर आए और मुझ पर ही झुंझुलाने लगे, अरे क्या कोई तरीका है हॉर्न बजाने का, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? मैंने कहा, ये आपका क्या तरीका है सर, ये कार किसकी है और मेरी पार्किंग में क्यों खड़ी है? वो बोले, मेरी पार्किंग कब से हो गई, ये सड़क क्या तुमने खरीद ली है? अब इतना सुनते ही मेरा गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा, आप अभी इसे हटवाइए सर। अंकल भी कम नहीं पड़ रहे थे, हमारी आवाज का लेवल बहुत ही अच्छा खासा बढ़ चुका था। इतने में उनका भीतर से लड़का आया और बोला, अरे रुकिए रुकिए, मैं आगे कर लेता हूं, पापा आप भीतर जाइए। अब यहां मुझे अपनी जीत होती दिखाई दे रही थी, मेरा ईगो जो सेटिस्फाई हो गया था। अब उस दिन से आज का दिन है मेरी कभी उन अंकल से बात नहीं हुई। बीच बीच में घर के सामने कचरे को लेकर मुंह बनाने जैसी बचकानी हरकतें जरूर होती रही, पर बात नहीं हुई। मुझसे भी अब हर शनिवार रविवार इंदौर जाना जम नहीं रहा था, तो मैंने मां अंजलि और बच्चों को यहीं शिफ्ट कर लिया। एक दिन देर रात अचानक घर की डोरबेल बजी। मैंने अंजलि से कहा, देखना तो कौन है, पर वो शायद किसी दूसरे काम में बिजी थी, तो मैं ही गया गेट खोलने। गेट खोलते ही देखता हूं कि गुस्सैल अंकल मेरे घर के सामने खड़े हैं। मैंने पूछा, क्या रे आप, बोलिए। वो कहने लगे, कुछ परेशानी है? बेटा तुम भी परेशान दिख रहे हो। अंजलि बहू भी अभी किसी से फोन पर बात करते हुए घबराई सी लग रही थी। बोलो क्या हुआ, बोलो बेटा। मैंने कहा, अंकल मां की अचानक तबीयत खराब हो गई। अंजलि यहां पास में हमारे चाचा जी का घर है, तो उन्हें फोन कर रही थी ताकि उनकी कार से मां को हॉस्पिटल ले जाए। अंकल बोल उठे, अरे तो तुमने हमें क्यों नहीं फोन किया? माना बेटा हम बात नहीं करते, पर मदद तो कर ही सकते हैं ना। और सुनो, सबसे पहला रिश्तेदार पड़ोसी होता है पराए शहर में, बेटा जरूरत पड़ने पर सबसे पहले वही आता है। गुस्सा अपनी जगह है, मुझे पता है तुम नहीं कर पाए होंगे फोन, और नहीं भी करते, पर मैंने देखा कि देर रात घर की लाइट जल रही है, बहू परेशान है, तो मैं ही आ गया। चलो चिंता मत करो, माँ जी को ले चलो। मैंने नमन को कह दिया है कि कार निकाल लो, चलो हम जल्दी से माँ जी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। अब यहां की जो अंकल की बातें थी वो मैं भी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। उन्हें मैं छोटे शहर का खड़ूस गुस्सैल किस्म का अंकल समझता था, पर अब वो सारी बातें मेरे सामने आने लगी जो देशपांडे सर ने सुयश ने मुझसे कही थी। मेरे लिए शहर अब कोसने योग्य नहीं बल्कि पूजने योग्य हो गया था। उस दिन अगर अंकल हेल्प न करते तो शायद मां की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती थी। डॉक्टर ने भी सलाह दी कि आप टाइम पर आ गए, बहुत अच्छा किया। मैंने अंकल से माफी मांगी कि अंकल मुझे माफ कर दीजिए। उलट अंकल मुझसे माफी मांगने लगे कि बेटा अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो मुझे

माफ कर दो। अब अंकल उनकी बहू और आंटी को अक्सर घर पर ले आया करते, मम्मी को भी अच्छा लगता और अंजलि को भी नई सहेली मिल गई। आज मुझे पूरे 3 साल हो गए यहां पर। पहले पहले जो डर था वो अब भी बना हुआ है, पर अब दोनों डर में अंतर है। पहले लगता था कैसे होगा, यहां क्या एडजस्ट होगा, ट्रांसफर हो जाए कहीं और तो अच्छा है, पर अब ये लगता है कि सब कुछ बढ़िया हो गया, बस अब कहीं और ट्रांसफर ना हो। एक दिन यूं ही मैं इत्मीनान से अपने कैबिन में बैठा हुआ तो नए न्यूज एंकर्स की ज्वाइनिंग डिटेल देख रहा था कि अचानक मेरी नजर थम गई। देखता हूं कि सुयश का फॉर्म भी है, उसका सिलेक्शन भी न्यूज एंकर के लिए हुआ है। अचंभित भी था और निश्चिंत भी था कि सही है, भगवान आपको अगर कहीं भेजता है तो आपके आसपास की व्यवस्था भी लगाकर भेजता है। सुयश कुछ समय के लिए कंटेंट राइटर की पोस्ट छोड़कर पत्रकारिता करने के लिए चले गया था, तो शुरुआती दिनों में उसकी हाजिर जवाबी मिस जरूर की, पर फिर आदत हो गई और लो आज वो फिर न्यूज एंकर बनकर आ गया। मैं डॉक्यूमेंट्स देख ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने कहा, जी आ जाइए। देखा तो बनवारी काका सामने खड़े हुए थे। मैं खड़ा हुआ और उनके पैर छुए। मैंने पूछा, काका आप यहां कैसे? सेम उन्होंने भी मुझसे सवाल पूछा, अरे गुड्डू तुम यहां कैसे? फिर मैंने उन्हें पूरी अपनी ट्रांसफर की स्टोरी सुनाई। चाय आई, चाय पर बचपन के पुराने किस्से डिस्कस हुए। बातों ही बातों में मैंने दोबारा पूछा कि बनवारी काका आप यहां कैसे? उन्होंने कहा, मेरे पोते का सिलेक्शन हुआ है न्यूज एंकर के लिए, तो उसी सिलसिले में आया था। अब मैं गहरी सोच में पड़ गया कि जो मैं सोच रहा हूं कहीं वैसे ही तो नहीं है। मैंने इतना कहा, उतने में उन्होंने कहा, हां हां सुयश, सुयश मेरा पोता है। अब मुझे यकीन हो गया कि आपके किए हुए काम, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई सभी आपके सामने इसी जन्म में आते हैं। बनवारी काका को मेरा स्कूटर पर घुमाना, सुयश का मुझे स्कूटर पर घुमाना एक यही उदाहरण है। हमारी बातें चल ही रही थी इतने में सुयश भी पधार गया। उसने हाथों में एक लिफाफा जैसा कुछ रखा हुआ था। मैंने कहा, लाओ भीतर आओ, तुम्हारी प्रोसेस तैयार कर देते हैं। तो कहता है, सर ये मेरे लिए नहीं है, ये तो आपके लिए है, बाहर पोस्टमैन आया था उसने दिया और कहा कि आपको दे दें। मैंने कहा, लाओ इधर दो। मैंने लिफाफा फाड़ा और जैसे ही खोला तो मैं देखता ही रह गया। एक अनपेक्षित भाव था मेरे चेहरे पर। सुयश ने पूछा, सर क्या हुआ? मैंने कहा, सुयश अब मैं तुम्हारा सर नहीं, अब कोई और रहेगा, मेरा यहां से ट्रांसफर हो गया है। यही होता है जब आप मंजिल के करीब होते हो और बस पहुंचने ही वाले होते हो, क्या आपको पता चलता है मंजिल अभी और दूर है। मुझे अब अपने आप में एक बदलाव भी लग रहा था कि जब मेरा ट्रांसफर यहां हुआ था तब मैंने उस लेटर को देखकर जो बातें सोची थी कि नया शहर कैसा होगा, क्या होगा, वो सब कुछ मेरे दिमाग में अब आने लगी। पर मैं इसे एक अपने टास्क की तरह लेने लगा और एक्साइटेड भी था कि क्या पता जैसा मैं यहां आने से पहले सोच रहा था उसके उलट हुआ वैसे ही वहां पर भी होगा। मैं सब सोच ही रहा था कि इतने में देशपांडे सर भी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर भीतर आ पहुंचे और उनके हाथों में था अपना लिफाफा। वो ज्यादा खुश लग रहे थे। अपनी बेस भरी आवाज में कहने लगे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। मैंने भी कह दिया, हम है तैयार चलो। शायद उनको उनकी मनचाही जगह ट्रांसफर मिल गया था और मैं थोड़ा हताश भी था कि मेरा मन जिस जगह को चाहने लगा था मुझसे अब वो दूर जा रही है।

दोस्तों ये तो सुनी आपने हमारा आज के क्रम की कहानी, गीतों भरी कहानी। चलिए दोस्तों अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक छोटा सा गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा कार्यक्रम युववाणी यहीं संपन्न होता है। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करें, उससे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं आज के हमारे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न के उत्तर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, फिंके नदी किस देश में स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, निर्यात प्रोत्साहन मिशन EPM किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? दोस्तों, इसका उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोस्तों, अब इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए अपने दोस्त संचित को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: ईछे नी माड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: सुनो ना।
3: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की, सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की, 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित, 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे, जिसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी CGCME OST सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों, मानसून की स्थिति और अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि देश भर में बारिश की कमी की आशंका वाले 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से 210 जिले अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि 2 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कॉन्टिंजेंसी प्लान की समीक्षा करने और किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को

0: पीले चावल भेंट करते हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन पदों की पूर्ति 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है। भोपाल में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में आज अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। ये भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के लिए पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए विद्यालय 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जिला स्तरीय क्विज 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले की विजेता टीमों को प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद यानी बार्क को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बैट, BMS, इपोक, IIN और लॉसिगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि आधार एप्लीकेशन पर ईमेल आईडी निःशुल्क अपडेट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होने के बाद पहले 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक ईमेल अपडेट हुए हैं। UIDAI के अनुसार ये सेवा 6 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और इससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, वहीं लगभग 10 लाख लोगों ने अपना पता भी अपडेट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए 24 घंटे चलने वाली महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित कर रहा है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और

की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर महिलाएं शिकायत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। हेल्पलाइन एक बार पुनः सुन लें, 1440। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु जम्मू से रवाना हुए, जिसमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान और 2,312 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सिहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने दो शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 9 दिन की देरी से आया मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। इंग्लैंड ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार की रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरी तरफ BCCI ने भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया है। ये दो मैचों की श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना के कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 2 CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। सिंगरौली के चितरंगी में विकसित भारत जीरामजी योजना का शुभारंभ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कार्यशाला की शुरुआत से किया। खंडवा जिला अस्पताल में OPD पंजीयन को आसान बनाने के लिए अब ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई है। आगरमालवा नगर पालिका ने कंपनी गार्डन में नीम, पीपल और बरगद के 111 पौधों का रोपण किया। पन्ना में राज्य खेल अकादमियों के लिए 12 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। मंदसौर में स्टॉप डायरिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन और पानी की जांच का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। देवास ITI परिसर में 7 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए नागरिकों से दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की है। सीहोर के स्कूली बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोजित 3 दिवसीय उमंग हेल्थ एंड वेलनेस प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। सागर खेल परिसर के मैदान पर मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के तीसरे चरण की चॉइस फिलिंग की शुरुआत हो गई है, जिसमें पहले से पंजीकृत अभिभावक 8 जुलाई तक चॉइस अपडेट कर सकेंगे। नीमच के जावत सिविल अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्पदंश का इलाज और एंटी स्नेक वेनम 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध है। और कटनी में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद नगर निगम के अमले ने नालियों की सफाई कर जल भराव की स्थिति को संभाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की। सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की। 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित। 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

केपी गृहस्थी कार्यक्रम लेना आज आपका साथ आपकी बहन सीमा कार्यक्रम सुनने वाला सबे किसान भाई बहन नखर राम राम। भाई बहन आज हम सब 80 पीढ़ी का साथ रहे आज जिनमें सादगी मितवैता भविष्य का प्रति जागरूकता थी। हमारा पूर्वज घर से निकलता समय बहुत सी बात न को ध्यान रखता था, जैसा कि घर से निकलया कि हाथ में एक छोटी सी कपड़ा की थैली लेना निकलता था, न कहता था कि बाजार में कहीं मिली जाएगा तो लेता आवांगा। मीलों पैदल चली ना कंधा पर सामान की थैली लेना आता था। वहां आज की हमारी पीढ़ी जी की पैदल चलनू तो दूर 10 कदम की दूरी पर भी वाहन लेना निकलें, सामान की थैली का लेना भी कही देज कि बाजार में अच्छा प्लास्टिक का बैग मिली जाए कई करनो जेनी थैली को, वाहन थैली रखनो भी अपनी आदत नहीं समझता। जेका परिणाम आज हमारा सामना छे, जिन्हें गौ माता मां 33 कोटी देवता न को वास छे, उन्हें गौ माता का हम प्लास्टिक बैग को जहर दई न मारी राज, पुण्य की जगह पाप करी राज। भाई बहन पर्यावरण प्रदूषण पर हम आपसी कई बार बात करान, ओका बावजूद हम अपनी आदत नमक कोई सुधार नहीं लाता। हमारा द्वारा फेंका गया ई प्लास्टिक बैग नदी नाला नका बहाव खा रुकी ना बाढ़ जैसी आपदा नका निमंत्रण दई राज। आज हम देखी राज कि घर से निकलने वाला कचरा में धूल मिट्टी तो कम पर प्लास्टिक ज्यादा छे। आया दिन हम रास्ता न से निकलता समय प्लास्टिक का ढेर देखा, लेकिन फिर भी हम अपना आप में बदलाव नहीं करता। हमारा शिक्षित होना को काई मतलब छे? हमारा पूर्वज जी की शिक्षित नहीं था फिर भी प्रकृति का पति अपनी जवाबदारी का बड़ी खूबी से निभावता था। उन हमका स्वच्छ पर्यावरण का साथ लहलाता हरा भरा घना जंगल जैविक खेती से उत्पन्न अनाज दियो, पर हम अपनी अगली पीढ़ी का काई दे न जावांगा एक बारा में सोचा। जगह जगह प्लास्टिक का अंबार लग्या, गली चौराहा खेत हो धरती में खोदतज ओमा सूक्ष्म जीव तो नहीं देखाता बल्कि प्लास्टिक बैग दबेल मिला। हमने अपना भविष्य का लेना केतरो खतरो उत्पन्न करी लियो एक ही हमका बिल्कुल फिकर नहीं है। फिकर छे तो आधुनिकता से भरेल जीवन शैली का अपनावना की। आज हम रोजमर्रा का जीवन में प्लास्टिक से बनया बर्तन न का उपयोग का बढ़ावा दे रहा, भूली गया हम मिट्टी से बनया उना बर्तन न का जिनको उपयोग करी ना हमारा पूर्वज शतायु पूरी करता था। आज हम कई प्रकार का रोग नसी ग्रस्त हुई राज। प्लास्टिक बैग न में चाय लेना आशा पीवान जसो की अमृत पान करी राज। भाई बहन इस प्लास्टिक का छोटा छोटा कण जब पेट में जाए तो कैंसर जैसा भयानक रोग नख निमंत्रण दे। हम अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखा, अपना आसपास का इना छोटा बड़ा जीव न को स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा। प्लास्टिक का उपयोग का पूरी तरह से अपना दैनिक उपयोग से हटावा। जैसो कि हम सब जाना कि आज छे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इना दिवस का मनावना को एकमात्र उद्देश्य छे हम इना प्लास्टिक बैग न की जगह कपड़ा का जूट का बांस का न प्राकृतिक रेशा से बनया उत्पाद न को उपयोग करा, अपना पर्यावरण का बचावा। प्लास्टिक का नष्ट होना का बाद निकलने वाली गैस सी वायु भी प्रदूषित हो रही। आओ संकल्प लेवा कि हम अपना पूर्वज नका द्वारा दी गई इन्हीं स्वच्छ प्राकृतिक हवा का शुद्ध बनावना का लेना प्लास्टिक उपयोग नहीं करांगा। जब भी घर से निकलांगा अपना साथ कपड़ा को बैग लेना निकला न मूक पशु पक्षी नको जीवन भी बचावा। भाई बहन इतो थी आपसे हमारी कुछ थोड़ी सी बातचीत। आओ अब सुनांज हेमलता उपाध्याय सी यो लोकगीत।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था हेमलता उपाध्याय सीईओ लोकगीत। आम समय छे आज का प्रश्न को। प्रश्न छे सटीक पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली काई छे। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो, सटीक पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली काई छे। इना प्रश्न का उत्तर हम आपका बतावांगा कार्यक्रम का आखिरी में। बने रहो हमारा साथ कार्यक्रम में। भाई बहनों, कृषि हमारा देश की अर्थव्यवस्था की

0: स्कीम चल रही है,
1: जी
0: उसमें लगभग 3.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।
1: किन किन प्रजातियों के पौधे इस कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे हैं?
0: वैसे तो अपन पौधे पर्यावरण संरक्षण वगैरह इनके हिसाब से लगाते हैं, इस बार औषधीय पौधों के साथ साथ सजावट के पौधे के साथ साथ फलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं।
1: तो इससे जनमानस को क्या लाभ है?
0: किसानों को नर्सरियों से काफी रियायत दर से पौधे दिए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि फलदार पौधे लगाए तो उसको फलों की प्राप्ति होगी, उन पौधों का भी अपने पर्यावरण महत्व भूमिका है।
1: तो आपने कहा कि ये जो प्रजाति के फलदार पौधे आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या किसानों को निःशुल्क दिए जाते हैं या कुछ शुल्क लेकर दिए जाते हैं?
0: इसमें क्या रहता है कि नर्सरियों में कुछ स्कीम है, वन विभाग ने चलाई है, तो उनमें कुछ पौधे निःशुल्क भी है, सशुल्क भी है।
1: आपके द्वारा ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनके देखभाल की क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती है?
0: पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोई भी पौधे लगा सकता है पर संरक्षण नहीं हो पाता है, इसके लिए संरक्षण के लिए हम वन विभाग विशेष ध्यान रखता है, क्योंकि उसके संरक्षण नहीं होगा तो पौधा क्या है कि नर्सरी से आने के बाद जीवित नहीं रह पाएगा। ट्री गार्ड लगाते हैं, कटीले तारों की बाड़ लगाई जाती है, सुरक्षा श्रमिक मतलब चौकीदार रखे जाते हैं ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनको समय समय पर पानी देना, खाद दवाई, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है।
1: हम देख रहे हैं कि हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी वनों की कटाई निरंतर होती जा रही है, शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और वन कम होते जा रहे हैं, तो इसके लिए शासन द्वारा या आपके विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: विभाग द्वारा तो समय समय पे हर जगह हर तरीके से हर कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी जैसे एक पेड़ माँ के नाम से स्कूल और कॉलेजों में पौधे लगाए जा रहे हैं, जन जागरूकता के भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। इस हमारे विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कुली बच्चों को जोड़ा जाता है, कुली बच्चे क्या है अपने परिवार को समाज में और बच्चे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, बैनर कार्यक्रम किए जाते हैं, जगह जगह हम लोगों द्वारा गाँव में जाके उसको फैलाया जाता है। जमीनी स्तर पे हम लोगों ने गाँव में बीट स्तर वन समितियां बना रखी है, वन समितियों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है और वहाँ भी हमारे द्वारा समय समय पर बैठक ली जाती है और संदेश दिया जाता है कि वनों को कटाई पे पूरा पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए।
1: विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर वन संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पगारे जी, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन, हम इस समय देख रहे हैं कि अभी भी हमारे यहाँ खंड वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है और उसका अनुभव भी हम कर रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वृक्षारोपण की क्या भूमिका हो सकती है इसमें?
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वृक्षारोपण बेहद प्रभावी और प्राकृतिक उपाय है। उसका एक कारण वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसके अलावा के तापमान को नियंत्रित भी करते हैं, मृदा संरक्षण भी करते हैं और जल चक्र को भी क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वायुमंडल के जो तापमान को है ना नियंत्रित करते हैं, अधिक से अधिक मतलब ठंडक बना के रखते हैं।
1: जी, जलवायु परिवर्तन में वृक्षों की बहुत अहम भूमिका है।
0: जी,
1: के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल
1: जी, जैसे आपने कहा कि हम जगह जगह अनुभव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, तो क्या इस और युवाओं का आकर्षण हो रहा है, क्या युवा आगे आ रहे हैं और इसमें कार्य कर रहे हैं?
0: हम लोगों ने क्या कर दिया कि जमीन स्तर पर पहले स्कूली बच्चों को जोड़ा, उसमें स्कूली बच्चों को जोड़ा मतलब वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। बच्चे क्या है कि स्कूलों में रहते तो वही लोग आगे आगे अवस्था में पहुँचते हैं, तो वहाँ से शुरुआत की है, तो वो शुरुआत काफी सराहनीय रही है कि काफी जगह कार्य हो रहा है, युवा इससे काफी संख्या में जुड़ रहे हैं। युवाओं के लिए एक बेहतरीन संदेश है, वृक्षारोपण अभियान के तहत हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं। उनको इस तरह से समझाते हैं कि कागज का कम से कम उपयोग करो, जिससे कि पेड़ों पर कच्चे माल का दबाव कम हो जाए। अवैध कटाई के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाते हैं उनके माध्यम से, नुक्कड़ नाटक है, हम प्रतियोगिताएं रखते हैं, मतलब पोस्टर मेकिंग करवाते हैं उनसे, वन प्रतियोगिता रखते हैं, जिससे क्या है कि उनसे क्विज करवाते हैं, आपस में कॉम्पिटिशन करवाते हैं, कुछ इन चीजों के ऊपर बनवाते हैं, तो बच्चे इससे जुड़ते हैं और कॉलेजों में युवा होते हैं। उनसे कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि अधिक से अधिक युवा जुड़ रहे हैं और उससे काफी लाभ मिल रहा है।
1: पगारे जी, जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं वर्तमान में, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे देश का विकास चल रहा है और इसके तहत पेड़ों की कटाई की जाती है, किस प्रकार से हम इन पेड़ों को बचा सकते हैं? देश का विकास तो करें लेकिन हमारे जो पेड़ हैं वो भी सुरक्षित रहें।
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो विकास के लिए क्या करते हैं, विकास तो जरूरी भी है, विकास में ये चीजें बाधक ना हो इसके लिए हमने क्या कर दिया है कि जब विकास के जो पेड़ काटे जाएंगे उसके लिए एक स्कीम है, उसमें अंतर्गत एक पेड़ आप काटो 20 पेड़ लगाना पड़ेगा। शासन की एक स्कीम है, विकास में अगर आप पेड़ काटते तो एक शर्त है, एक पेड़ काटने पर 20 पेड़ लगाना पड़ेगा।
1: जी, मतलब हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारे देश का विकास।
0: क्षतिपूरक वृक्षारोपण बोलते हैं, यदि विकास कार्य के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं तो विभाग द्वारा उसके लिए एक स्कीम बनाई, उस स्कीम को बोलते हैं ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी।
1: जी जी,
0: मध्य प्रदेश शासन की एक स्कीम है जिसे

0: ट्रांसलोकेशन पॉलिसी बोला जाता है, इसके अंतर्गत एक पेड़ के बदले आपको 20 नए पौधे लगाना पड़ेगा
1: और उसके संरक्षण की जवाबदारी भी उसी व्यक्ति को दी जाती है।
0: उसे फाउंडेशन रखते हैं, उसका एग्रीमेंट किया जाता है।
1: जी जी,
0: हमने अभी मैंने भी देखा है, प्रत्यक्ष देखा है कि हमारे क्षेत्र में रोड निकल रहे हैं अभी, वहाँ उनसे 300 पौधे लगवाए। पहले 10% का था, 10 गुना था, पौधे लगाए, उनसे टी गार्ड लगवाए। तो लगाने के बाद उन देखभाल की व्यवस्था भी उन लोगों ने अच्छी करी, सराहनीय पहले अच्छा कार्य रहा।
1: जी पगारे जी, और इस क्षेत्र में और अधिक इसको प्रभावी बनाने के लिए आपके विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि आगामी जो है हमारा वन क्षेत्र हरा भरा हो जाए, तो किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं?
0: वन महोत्सव को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक पेड़ लगाने के लिए प्रतीकात्मक उत्सव था पहले, इसे आगे बढ़ाकर हमने एक व्यवहारिक जन आंदोलन बना लिया है।
1: जी,
0: ये मतलब क्या है, एक प्रतीकात्मक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, पर हमने उसको एक व्यवहारिक जन आंदोलन बना लिया है, जिसमें वृक्षारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण और डिजिटल तकनीक से जोड़ लिया उसको।
1: जी,
0: जिसमें लगाए गए पेड़ को क्या करते हैं, हम गोद लेने की प्रक्रिया है। पेड़ पौधे तो लगा देते हैं, पर एक जन स्तर पे पेड़ों को गोद लेने की प्रक्रिया प्रारंभ किया, जहां छात्रों को, सरकारी कर्मचारियों को एक एक पेड़ गोद देकर उसकी नियमित देखभाल की जिम्मेदारी दी है। और उसके अलावा एक और स्कीम अपनाई है, जियो टैगिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग। जो लगाए गए पेड़ है, जो लगाए गए पौधे हैं, उनकी टेकिंग की जाती है। टेकिंग से पता चलता है कि उनकी स्थिति पता चलती है, पौधे लगे भी है वास्तव में, देखभाल कैसी हो रही है, ये डिजिटल मॉनिटरिंग बोलते हैं उसको। उसके अध्ययन से ट्रेस किया जाता है कि एक्चुअल में पौधे लगे भी है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग हो भी रही कि नहीं, जिंदा भी है कि नहीं। स्थानीय प्रजातियों को चुनाव करते हैं हम लोग वहाँ पे, जलवायु के हिसाब से कि भाई ये पौधा यहाँ सर्वाइव कर पाएगा, मतलब जिंदा रह पाएगा कि नहीं। मिट्टी के हिसाब से पौधा लगाएंगे, हमने दूसरी प्रजाति ना लगा पाएगी जो वहाँ सर्वाइव नहीं कर, जीवित नहीं रह पाए, हम चीज का भी चुनाव करते हैं। शहरों में एक सीमित जगह पे एक मियावाकी पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, पद्धति ऐसी है जो कम समय में और कम जगह में अधिक से अधिक पौधे लगे और जीवित रह पाए।
1: तो उस पद्धति की क्या प्रोसेस है?
0: उसमें क्या होता है कि शुरुआत वही होती है कि उसमें अपन क्या करते हैं कि जगह का चयन करते हैं, और जगह का चयन करने के बाद वो क्या है कि वहाँ मिट्टी का चुनाव करते हैं हम कि भाई इस पौधे यहाँ जीवित रह पाएगा कि नहीं, और उसमें कम से कम जगह की आवश्यकता रहती है, जिस कुछ पर्यावरण के लिए अधिक रहे, उससे समय भी कम लगता है। पौधे जैसे करंज है, किशम है, ये पौधे क्या रहते हैं कि बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और जल्दी फैलते हैं, और पर्यावरण के लिए बहुत अति आवश्यक, मतलब आवश्यक है ये चीज।
1: जी जी, ये जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी सराहनीय है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ खेती का भी बहुत बड़ा रकबा किसानों के पास है, तो क्या किसान मेड़ पर इन पौधों को लगाने के लिए आपसे संपर्क करते हैं? क्या मेड़ पर भी पौधे लगाने के लिए आप किसानों को प्रेरित करते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी क्या हुआ कि वन विभाग की बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें अभी बांस के पौधे हमने पिछले लगातार 5 वर्षों से हम बांट रहे हैं, और किसान हमसे संपर्क नहीं करे तो हम लोग किसानों से जाके संपर्क करते हैं, और हम उनको बताते हैं कि हमें क्या है कि इसके लिए एक्स्ट्रा भूमि की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, हमें क्या है कि आपको मेड़ पे ही पौधे लगाना है, नदी के मेड़ पे तो लगाना ही है, आपके खेत के किनारे पे जो नाला है जो उपयोग में नहीं है उस किनारे पे लगाना है। तो ये क्या है कि बांस के पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, आपकी भूमि का कटाव भी रोकते हैं, नाले या नदी से भूमि को नुकसान होता उसको भी बचाते हैं, और आपके मतलब पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। उसके लिए हम खुद ही किसानों से संपर्क करते हैं, हमने काफी किसानों से पौधे लगवाए भी हैं। सरकार ने एक अच्छा किया है कि उनको पौधे का और पौधे लगाने का और निंदाई गुड़ाई सभी का पैसा गवर्नमेंट वहन कर रही है। किसान काफी प्रेरित हुए हैं और काफी लोग उससे जुड़ते गए हैं, पहले कुछ लोग जुड़े बाद में फिर जुड़ते गए, और कार्यक्रम के अंतर्गत काफी लोग जुड़े और इस बार और ज्यादा लोग जुड़ के काफी लोग उससे प्रेरित हुए हैं।
1: पगारे जी, आपके विभाग द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, भविष्य हमारा उज्जवल रहे, पर्यावरण के प्रति जो हमारे द्वारा भूल हुई है उसको सुधारने का एक अवसर देती है हमें बारिश, तो इस समय आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनमानस को कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं, किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण को बचा सके और वन क्षेत्र को बढ़ा सके?
0: वन महोत्सव के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि पेड़ लगाना मात्र एक औपचारिकता नहीं या उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्तित्व है, और पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।
1: कर्तव्य जी,
0: हाँ, इसमें कुछ बातें हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, और सभी जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण ध्यान दें कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए
1: जी।
0: और वनों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, इसलिए

0: पेड़ों की कटाई पर रोकना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, इसको हमारा जिम्मेदारी मानना चाहिए
1: जी।
0: और इस उत्सव से हमें यही प्रेरणा मिलती है हम वनों की सुरक्षा करें और हरियाली को बढ़ावा दे, वन आवरण को बढ़ावा देना है
1: जी। आपका बहुत सुंदर संदेश हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं और जरूर वो इस चीज को अपनाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता वन महोत्सव का अंतर्गत ग्राम शर्मेश्वर रेंज का वन संरक्षक श्री जितेंद्र प्रगारे से वन महोत्सव पर ये बातचीत। भाई बहनों आओ आप सुना आनंदराम ने उनका साथी नसी यो लोकगीत।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था आनंद राम ने उनका साथी नसी यो लोकगीत। अब समय छे कृषि समाचार न को। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव न कहो कि प्रदेश सरकार किसान नख आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराण न कलेना निरंतर कार्य करी रही। कृषि यंत्रीकरण सी खेती की लागत में कमी आवेगा, समय की बचत होएगा, न उत्पादन न किसान न की आय में वृद्धि होएगा। शासन को उद्देश्य प्रत्येक किसान नख तकनीक आधारित खेती से जोड़ी ना आत्मनिर्भर न समृद्ध बनाऊ। भाई बहनों, इतो था आज का कृषि समाचार। अब कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव इना प्रकार से छे। सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो 3,000 रुपया, अधिकतम 7,200 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव 2,400, अधिकतम 2,661 रुपया प्रति क्विंटल। तुवर को न्यूनतम भाव 5,000, अधिकतम 7,212 रुपये प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव 4,750, अधिकतम 5,807 रुपये प्रति क्विंटल। डॉलर चना को न्यूनतम अधिकतम भाव रहे हो 5,157 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव 2,100, अधिकतम 2,166 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव 6,701, अधिकतम 7,390 रुपये प्रति क्विंटल। इतो था कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव। मौसम की जानकारी आज सूर्योदय 5:45 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7:10 पर। आज दिन को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनों, इतो थी मौसम की जानकारी। नाओ अब सुनान जयराम सावनेर न उनका साथी नसी यो लोकगीत।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था जयराम सावनेर न उनका साथी नसी यो लोकगीत। अब समय छे आज का प्रश्न का उत्तर को। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न पूछो तो कि सटीक पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली काई छे। तो सटीक पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली जेमे मिट्टी की स्थिति, फसल की आवश्यकता, मौसम के अनुसार उर्वरक न को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करो जाय, एमा आधुनिक तकनीक जसो की मृदा परीक्षण, GPS सेंसर, ड्रोन न डिजिटल कृषि उपकरण न को प्रयोग करो जाय। भाई बहन इन आज का प्रश्न का उत्तर के साथ कार्यक्रम को समय पूरा हो। आज्ञा देव, राम राम।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अभी खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था, अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

श्रोताओं, हवा महल में आज आप सुनेंगे पड़ोसी का कैमरा, ये प्रहसन। लेखक हिमांशु श्रीवास्तव, निर्देशक भगवान साहू।

0: मिठाई लाल जी, ये दोनों हाथों में रबड़ी कपटी, खूब रबड़ी खाओ भाई, मौसम सर्दी का आ गया, यही वक्त है सेहत बनाने का।
1: अरे रे मनीष शंकर, अरे हाँ, ये हैंडबैग आज क्यों इतना भारी?
0: कोई खास बात नहीं, एक कैमरा खरीदा है।
1: कैमरा?
0: हाँ,
1: यानी फोटो खींचने वाला कैमरा?
0: हाँ भाई, जमाने से सोच रहा था कि।
1: अरे दिखलाओ भाई, दिखलाओ, जरा कमाल कर दिया तुमने।
0: यहाँ राह में दिखाऊं यार?
1: अरे यार, आज इतवार है, कई दुकानें बंद है, चलो किसी

0: अरे रे कलवल देख लेना, कैमरा है बस, कोई अचंभे का बच्चा तो है नहीं। अभी जाओ रबड़ी खाओ, कहीं कपटी हाथ से छूट पड़ी तो।
1: अच्छा भाई।
2: मुक्ता, ओ मुक्ता
3: आई।
0: अरे भाई जरा इस बैग को होशियारी से पकड़ो तो।
4: क्यों क्यों, क्या है बैग में और कहाँ रह गए इतने देर? रविवार को भी घर से बाहर, सर्दी गिरने लगी और समय भी।
0: कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई, 7 बजकर यही कोई 48-49 मिनट।
4: अरे बैग तो थोड़ा भारी लगता है।
0: अरे क्या है, संभाल के मुक्ता।
4: क्या होगा, कोई अच्छी सी साड़ी या ब्लाउज पीस?
0: बस बैग मत खोलो और समझ जाओ कि इसमें क्या है, तो मान लूं कि हो लाल बुझक्का।
4: और जनाब मैं हार मान लूं तो मेरी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी?
0: तो मान लो हार।
4: मानती हूँ।
0: इसमें कैमरा है मेरी जान।
4: सचमुच?
0: हाँ बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या देख लो निकाल के।
4: अच्छा, अरे ओहो ये तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा किया, तुम्हें बहुत दिनों से एक कैमरा लेने का शौक था।
0: देखो डार्लिंग, इसके लिए मैंने वो पैसे बटोर के रखे थे जिन्हें तुम मेरी जेब खर्च के लिए देती थी।
4: अच्छा?
0: खुश होना।
4: क्यों नहीं, मैं तो खुद सोचती थी कि किसी तरह तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाए। अच्छा चलो खाना खा लो, रोटी ठंडी हुई जाती है।
0: अच्छा चलो।
5: घर में हो भाई यार?
0: ये तो बेखबर वाच रिपेयरिंग हाउस वाला है, क्यों मुक्ता?
4: हाँ नजाकत हुसैन,
0: ये तो भयानक गप्पी है, चाय भी न पी सका। और अच्छा खैर, तुम उसे भी चाय पिला देना और रसोई की तैयारी।
4: अच्छा पहले दरवाजा तो खोल दो।
5: भाई पापा क्या कहने हैं, मुबारकबाद देने आया हूँ।
0: अरे काहे की मुबारक नजाकत साहब,
5: आपके भी नखरे का जवाब नहीं भाईजान, रात अच्छा खासा नया कैमरा ले आए।
0: कैमरा? ओ कैमरा, आपसे किसने कहा?
5: अरे कहेगा क्या कोई दुश्मन, दुश्मन तो सुनकर बस चलेगा ही।
4: आखिर हम भी तो सुने सही।
5: हाय हाय भाभी साहिबा के भी क्या कहने हैं, कुर्बान जाऊं। अरे ये जो अपना पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाई लाल, उसी ने बतलाया। खैर कोई बात नहीं, मणिशंकर भाई।
0: हाँ।
5: आज सूरज डूबने से पहले मेरे दोनों बच्चों की तस्वीर।
0: बच्चों की तस्वीर?
5: हाँ हाँ हाँ, दुकान में अपनी सीट के सामने फ्रेम कराकर लगा दूंगा।
0: अरे मुक्ता इन्हें चाय पिलाओ भाई। अच्छा भाई दोनों बच्चों की तस्वीर तो खींच दूंगा, मगर फिल्म और धुलाई का खर्च।
5: बस बस बस बस, ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात यकीन करने को नहीं कि तुम मुझसे इनका खर्च लोगे। तो भाई रही बात पक्की? क्यों?
0: अच्छा रही पक्की।
5: अच्छा तो मैं चल आ।
4: अरे चाय तो।
0: अरे जाने भी तो, लाओ एक कप मैं पी लेता हूँ और एक कप तुम पी लो।
3: कौन?
6: मैं हूँ गुरु घंटाल।
4: अरे राम ये तो अपने मकान मालिक हैं।
0: तो खोल दो दरवाजा और तुम भीतर चली जाओ।
4: अच्छा।
7: जय राम जी की मणिशंकर बाबू, कहिए क्या हाल चाल है?
0: बस दुआ है आपकी, कहिए कैसे कृपा की।
7: अरे भाई सुना कि कैमरा लाए हैं आप।
0: जी हाँ ले तो आया हूँ।
7: बस तो बच्चों का मन रख दीजिए, मेरी बेबी भी चाहती है।
0: क्या चाहती है?
7: बात यह है कि कल मेरी छोटी बच्ची अपनी गुड़िया का ब्याह पड़ोस की लड़की के गुड्डे से रचा रही है।
0: अच्छा अच्छा।
7: मत पूछिए, बहुत से लड़कों का हुजूम रहेगा।
0: हाँ।
7: करीब 8 बजे रात में आप उसी अवसर पर सिर्फ 15-20 फोटो।
0: मगर गुरु घंटाल जी, रात को फोटो लेने के लिए तो फ्लैश लाइट चाहिए और वो तो मेरे पास है नहीं।
7: अजी साहब तो कौन बड़ी जमा पूंजी लगती है, एक फ्लैश लाइट खरीद लीजिए, आपके और भी काम आ जाएंगी। तो रहा पक्का कल रात 8 बजे, भूलना नहीं। अच्छा तो मैं चलूं।
4: क्या कह रहे थे, शायद फोटो लेने की बात?
0: मत पूछो, समझो कि मैं मर गया। अच्छा मुक्ता एक बात तो बताओ, रखती हो कुछ अपने पास?
4: मतलब?
0: कुछ पैसे हैं, फ्लैश लाइट खरीदनी है।
4: थोड़े से पैसे रख छोड़े हैं, दे दूंगी।
0: अरे भाई मकान मालिक है, और हाँ रसराज को भी तो फोटो देना है, स्टूडियो में धुलने और प्रिंट करने को दे आया हूँ, पैसे ही नहीं है कि लाऊं, और रसराज है कि सुबह शाम तक अदा करता है।
4: अच्छा वो कवि महोदय, धुलाई और प्रिंट के पैसे क्यों नहीं मांग लेते तुम?
0: अरे भाई वो कवि है ना।
4: मगर मुझे उस रोज एक बात अच्छी नहीं लगी।
0: क्या?
4: वो मेरे साथ फोटो लिवाने को मचल गया।
0: हाँ।
4: और तुम भी तैयार हो गए, अपने दोस्तों को दिखाएगा और।
0: अरे राम राम राम राम, रसराज ऐसा नहीं कर सकता, कितना आदर करता है तुम्हारा।
4: कोई आया है,
0: देखो तो सही।
8: जयराम जी की मणिशंकर भाई।
0: ओहो जयराम जी की, जयराम जी की, कहिए मिठाई लाल जी कैसे कैसे पधारे।
8: अरे भाई तुम फोटो खींचने का कैमरा क्या ले आए, मुझसे नाता ही तोड़ लिया। कवि जी की तस्वीर ली गई, मकान मालिक गुरु घंटाल जी की बेटी ने गुड़िया का विवाह रचाया तो उस अवसर की तस्वीरें ली गई, और क्या नाम है नजाकत हुसैन के बच्चों की तस्वीरें उतारी, और फिसड्डी पड़ा तो मैं।
0: क्या गजब हो गया, कहो भी तो।
8: अरे भाई मुझे क्या घर परिवार नहीं।

0: है, क्या मैं अरमानों की दुनिया से दूर हूँ या कि तुम मेरे पड़ोसी?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कौन कहता है भला?
0: तो फिर आज तुम दफ्तर से सूरज डूबने से पहले आ जाओ, मेरे बच्चे और बच्ची की तस्वीर खींच दो, बच्ची को राधा और बच्ची को कृष्ण का मेकअप कराऊंगा।
1: मगर बात यह है मिठाई लाल जी कि फिल्म धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
0: जी हाँ जनाब, जैसे वे आपके बच्चे ही नहीं। छोड़ो ये चोचले, बस आज शाम याद रहे, सूरज डूबने से पहले मैं उन्हें तैयार रखूंगा।
2: हे भगवान, ये कौन पहुंचा?
3: दरवाजा खोलिए भाईजान।
4: आधा वर्ष है नजाकत भाई।
3: भाई माफी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए।
1: क्यों, क्या हुआ? आज तो तेवर ही बदले हुए जनाब के।
3: भाई साफ इनकार कर जाते तो अच्छा था, बच्चों की तस्वीर क्या ली, सब कूड़ा कर दिया। खुदा की कसम, चार रोज तस्वीर लगाई नहीं कि उनका प्रिंट ही उड़ने लगा। लोग कहते हैं पड़ोसी के साथ मुरव्वत करो, मिल तो गया नतीजा मुरव्वत का, आकर दुकान में ले लेना वो तस्वीरें। अच्छा मैं जा रहा हूँ।
2: ये तो अच्छा अंजाम मिला मुफ्त तस्वीर खींचने का।
1: खैर क्या करना है, तरह तरह के लोग हैं। अच्छा मुक्ता, जरा वो मेरा बैग तो लाना, कल बंबई से तुम्हारी बड़ी जीजी का पत्र आया है। है तो वो मेरी केयर ऑफ, मगर लिखा है पर्सनल, निकाल के पढ़ लो। और हाँ, एक मैगजीन भी रखी है उसमें, लाना तो जरा।
2: अभी लाती हूँ।
1: पढ़ लिया पत्र? सब ठीक ठाक तो है ना?
2: हाय, ये तो गजब हो गया। जरा वो मैगजीन तो खोलना, पेज 19।
1: क्या बात हुई?
2: अरे, उस पत्रिका में कवि रसराज ने वो तस्वीर छपवा दी जो मेरे साथ ली थी उसने।
1: सच?
2: हाँ, देखो तो सही।
1: ये तो रहा पेज 19 है, रसराज की कविता छपी है इसमें, मिलन वेला। ठीक वही फोटो, नीचे छपा है कवि जीवन संगनी के साथ।
2: और ये पत्र पढ़ो, जीजी क्या लिखती हैं।
1: प्रिय मुक्ता, तुमने जो गलत कदम उठाया उसके लिए हम लोग समाज और बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भला मणिशंकर में क्या गुण था? मणिशंकर अगर तुम्हारे पास मेरा ये पत्र पहुंचा दे तो फौरन उत्तर दो कि क्या मामला है। मैंने पिताजी से भी इस बारे में सही खबर देने को कहा है, उन्हें तो बड़ा सदमा पहुंचा होगा। मैगजीन के प्रति भेज रही हूँ जिसमें तुम्हारे कवि पति के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी है। अरे राम राम राम, इस रसराज ने तो बाहर डाला हमें। देखो तो सही कौन आया है मुक्ता।
3: अजी क्या हुआ उन तस्वीरों का मणिशंकर जी?
1: वो बात यह है गुरु घंटाल जी, वो बात यह है कि तस्वीरें तो 15-20 हैं और उनकी धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
3: दिल में कालापन क्यों रखते हैं साहब? उस रोज तो फ्लैश लाइट का रोना रोते रहे। मकान में जब आए थे तो कहा था भाई बनकर रहूंगा, और अब बच्चों के लिए 10-5 का भी मुंह देखने लगे।
1: जी हर महीने एडवांस किराया देता हूँ, इतना ताप क्यों सहू?
3: तो मत सहिए ताप, बड़े मातवर है तो मकान खाली कर दीजिए। जब मकान मेरे पास तो बहुत किरायेदार मिलेंगे। मकान किराए पर क्या दिया था, कोई पगड़ी नहीं ली थी। मुझे ऐसा जुबानी भाई नहीं चाहिए। कब करते हैं मकान खाली?
1: बस जितनी जल्दी होगा।
3: तो बस जल्दी करें, मैं टूलेट की प्लेट टांगने जा रहा हूँ। जयराम जी की।
1: जयराम जी की।
2: ओफो, तुम तो बुरे फंसे कैमरा लेकर। अच्छा मैंने तुम्हें रात बतलाया नहीं?
1: क्या?
2: वो पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाईलाल, उलाहना देने आए थे, फोटोग्राफी नहीं खाक जानते हैं। राधा भी तस्वीर में गोरी आ गई और कृष्ण भी गोरा आ गया। बेटी तो उनकी एक आंख से कानी है, कहने लगे ज्यों की त्यों तस्वीर उतार कर बच्ची का मजाक उड़ाया है।
1: हे भगवान, कहां से ये कैमरा खरीद लिया मैंने?
2: और अपने कवि मित्र रसराज से नहीं पूछोगे कि ये कांड क्यों किया?
1: उसकी याद मत दिलाओ मुक्ता, ऐसे नादान दोस्तों को मुंह नहीं लगाऊंगा कभी। अच्छा अभी चलता हूँ बाहर, एक मित्र के मकान का आधा हिस्सा खाली पड़ा है, तुम तब तक सामान संभालो। मैं चला।
2: और गुरु घंटाल जी तो?
0: मुक्ता भाभी माफ कर दो, इस कवि देवर को माफ कर दो। संपादक ने कविता के साथ छपने के लिए मेरी तस्वीर मांगी थी, मेरे पास अलग से अपनी कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ वाली तस्वीर भेज दी और संपादक को यह बतलाना भूल गया कि महिला का चित्र बचाकर काट ले तब छापे।
2: मगर हद हो गई कवि जी, मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है।
0: जो भी हो माफ कर दो भाभी, मैं तो शर्म से दुबला होता जा रहा हूँ। गम में आज दाढ़ी बनाई तो क्रीम नहीं लगाई, देखो आंखों में सुरमा तक नहीं डाला।
2: बस बस बस अभी भाग जाओ, कहीं वो आ गए तो।
1: चलो मुक्ता, ताना खड़ा है, सामान लगवाओ। कम वक्त कैमरे को भी बेच आया, उसके साथ जहां जाते के शोर होता, पड़ोसी के पास कैमरा है।

अभी आप सुन रहे थे हिमांशु श्रीवास्तव का लिखा प्रहसन पड़ोसी का कैमरा। इसके निर्देशक थे भगवान साहू। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आपको याद दिला दें कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार रामलाल पर।

कल दोपहर 3 बजे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा मनचाहे गीत। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। कल शाम 7 बजे विशेष जयमाला में सुनिए पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आपको सुनवाएंगे सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का पहला भाग। कल रात 9:30 पर आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार भरत व्यास पर।

रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और देश विदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। तो ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों के बारे में।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

कार्यक्रम चित्रलोक सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है तेजाब।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
1: हाँ।

लीजिए सुनिए अगला गीत कविता कृष्णामूर्ति, करसन सरगतिया और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है महबूब, संगीतकार हैं इस्माइल दरबार। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want...

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है शिवहरी ने। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल, कविता कृष्णामूर्ति, केके और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है नुसरत बद्र ने, तर्ज है इस्माइल दरबार की, फिल्म का नाम है देवदास।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं

0: दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को

0: के लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत CG सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
2: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई जिसमें

0: इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं कैफी आज़मी, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: जाऊं भी?
0: नहीं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार हैं कैफ भोपाली, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं परवेज शमसी, धुन है सी रामचंद्र की, फिल्म का नाम है नौशेरवाने आदिल।

0: दोस्ती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित

0: करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया, उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना, जो बनी थी 1971 में।
1: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी 3 फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पर आई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: ये रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई, रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: भले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग

1972 में फतेह पुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: खुदा की कसम हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा, इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
1: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है, तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, अब आप ये बताइए कि अख्तर।
1: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में कितनी फिरदौस का नाम ले रहे थे।
0: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुँह फट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहे।
0: तो सुनिए हर रोज रात 9:30 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में, तो क्षितिज गुनगुना कर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

दिल का खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती है, जैसे आवाज लगाती हैं, कभी देखो तो यहाँ। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

वो रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में

मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।